जगतारे भजन करो हरे जगत जगतारे भजन करो।

0: बढ़ा सकते हैं।
1: अरे लेकिन हम लोग बताना भूल ही गए हैं कि आपके साथ इस समय मौजूद है आपके अपने रेडियो दोस्त वर्षा
0: और साथ में है मनीष।
1: और कार्यक्रम आजीव का आप लोग सुनी रहे हैं और आजीव का कार्यक्रम में हम लोग बात करते हैं अपने आजीविका से जुड़ी हुई बातों को हम लोग करते हैं इस कार्यक्रम में, जैसे कि कोई बैंक की योजना अगर हो या फिर कोई नया व्यवसाय हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, कुल मिलाकर अपनी पूरी आजीविका से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम होता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि इस कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है कि हमारे श्रोता साथी सबसे ज्यादा इस कार्यक्रम को सुनकर अपने जीवन में परिवर्तन करें, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैल गई है इस क्षेत्र में, तो बेरोजगारी को देखते हुए हम अपना स्वयं का व्यवसाय कर सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं।
1: बिल्कुल आपने सही कहा है कि व्यवसाय को कर सकते हैं, लेकिन मनीष जी अभी अगर कहा जाए हम लोग सोचेंगे नहीं कि किस तरह से हमें एक नया व्यवसाय करना है, उस तरीके से हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते और अपनी आजीविका को चलाने के लिए कोई ना कोई तरीका तो हमें ढूंढना चाहिए। तो देखिए मनीष जी, अभी सुबह की हम अगर बात करें तो सब्जियों की बात जहां तक आती है तो हमें लगता है कि एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है सब्जियों का व्यवसाय।
0: बिल्कुल सही कहा वर्षा, क्योंकि हम और आप देखते हैं और इस बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज्यादा सब्जी उगाई जाती है, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं आइडिया ये आया है कि हम किस तरीके से सब्जियों का व्यवसाय करके हम अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखते हैं कि यदि हम सब्जी तो एक तरफ होती है, यदि हम दूसरे पद्धति से यानी ऑर्गेनिक पद्धति से यदि हम सब्जियों को उगाएं और उसको पैकिंग कर हम बढ़िया तरीके से उसको बेचें, तो उसमें दाम जो रहते हैं, जो सब्जियां आती हैं उसकी सब्जी और जो ऑर्गेनिक सब्जियां रहती हैं उनके दामों में काफी फर्क रहता है, तो हम भी ऑर्गेनिक पद्धति से यदि हम खेती कर और सब्जियां उगाकर हम अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा है मनीष जी आपने, क्योंकि देखिए हमारे किसान साथी यही सोच रहे होंगे कि क्या हम सब्जी का व्यवसाय नहीं करते हैं या फिर खेती नहीं करते हैं, तो ये सही बात है, आप लोग करते हो, बहुत अच्छे तरीके से करते हो, लेकिन अगर ऑर्गेनिक तरीके से आप अगर सब्जियों का व्यवसाय करते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑर्गेनिक तरीका क्या होता है, इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो साथियों ये जो कार्यक्रम है वो हम आपके लिए इसीलिए लेकर आते हैं ताकि आपको नई नई चीजों से अवगत कराया जाए और नया कार्य आप किस तरह से कर सकते हैं अपने या फिर जीवन शैली कह लीजिए उसको या फिर खेती बाड़ी कह लीजिए उसमें आप किस तरह से एक नया बदलाव कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हम इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं।
0: बिल्कुल वर्षा, और हम कोशिश करते हैं कि हम उन सारी जानकारियों को आपको उपलब्ध कराएं जो आपके लिए बेहद जरूरी हो, क्योंकि इस बुंदेलखंड क्षेत्र में यदि हम ये तो आपने कहा ऑर्गेनिक पद्धति से खेती कर व्यवसाय कर सकते हैं, दूसरी अगर तरफ देखा जाए तो यदि हम वैज्ञानिक पद्धति से उनके चले हुए कार्य से हम यदि अपने काम को करें या अपने व्यवसाय को करें तो जरूर उन्नति होगी, जरूर उस कार्य में हमें जरूर अच्छा मुनाफा होगा यदि हम वैज्ञानिक पद्धति से करेंगे तो हम।
1: हाँ जी जी बिल्कुल मनीष जी, हम यही कहने वाले थे कि अब हम बात को अपनी यहीं पर थोड़ा सा विराम देते हैं क्योंकि बहुत बातचीत हो गई है और अब हमारे साथी जो है वो सोच रहे होंगे कि कब हमें इस प्रोग्राम के बारे में सुनाया जाए और आज आप किससे मिलवाने वाले हैं इस विषय में भी बता दीजिए।
0: तो हम चलते वहां पर हम पहुंचे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में जहां पर शोध होता है, जहां पर पढ़ाया जाता है, किताबों में बताया जाता है कि किस तरीके से हम सब्जियों का व्यवसाय कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो जलवायु परिवर्तन को जलवायु को देखते हुए हम कर सकते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो मिट्टी के भी फर्क पड़ता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है और किस प्रकार की मिट्टी में हम कौन सी सब्जी उगा सकते हैं, तो यदि हम वैज्ञानिक पद्धति से हम व्यवसाय को करें सब्जियों का व्यवसाय करें तो हमें जरूर मुनाफा होगा, फायदा होगा। तो हम आपको सीधा हरपाल सिंह जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में पदस्थ हैं प्रोफेसर के पद पर, तो उनसे जानते हैं कि किस तरीके से हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में लोग सब्जियों का व्यवसाय कर अपनी आजीविका को बढ़ा सकता है, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं।

0: नमस्कार।
1: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में।
0: और आजीविका कार्यक्रम में हम अपने श्रोता साथियों के लिए ऐसे व्यवसाय के बारे में बताते हैं जो हमारे श्रोता साथी इन व्यवसायों को कर अपनी आमदनी को

0: सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। सर मेरा नाम हरपाल सिंह है, मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में लेक्चरर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में, और मैं पिछले 5 वर्षों से यहाँ पे अपनी सेवा दे रहा हूँ। मैं किसानों की आय बढ़ाने के लिए सबसे आपको ये सबसे पहले ये सुझाव देना चाहता हूँ कि हम लोग बुंदेलखंड के किसान काफी जो है युवा है और काफी नॉलेज है, मतलब

0: दूसरा क्योंकि मैं भी यहाँ पे हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन के भरवा सागर में है, मैं यहाँ पे गया हूँ कई बार किसानों संबोधित करने, किसान मतलब जो है सब उसमें। तो मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि किचन गार्डन भी आप कर सकते हैं। किचन गार्डन में क्या होता है कि आप जो है अपने घर के आसपास जो जगह खाली पड़ी रहती है उसमें हम लोग जो है एक घरेलू स्तर पे सब्जी उगा सकते हैं, जिससे हमें जो है एक तरीके से हमें फ्रेश सब्जी खाने में मिलती है और बिना केमिकल के हम ये सब्जी उगा लेते हैं। दूसरा ये कि हमें उसमें अलग से कोई टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और अलग से कोई पानी की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। घर से निकलने वाला जो पानी होता है वही इसमें इस्तेमाल रहता है, जो किचन से पानी निकलता है
1: जी।
0: और जो है शुद्ध शुद्ध सब्जियां हम जो है उगा सकते हैं
1: जी।
0: और दूसरा इसके साथ ही साथ ये हम क्योंकि बुंदेलखंड की धरती जो है काफी उर्वर है, उपजाऊ है
1: जी,
0: तो यहाँ पे हम सब्जियों की खेती जैसे बैंगन की खेती कर सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं। अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था यहाँ पे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में
1: जी,
0: कि हमने एक पोषण ड्रम है एक वैरायटी है पत्ता गोभी की, उसी से हमारा रिसर्च चल रहा है
1: जी।
0: तो उसपे हमने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा। हमने जो है केमिकल खेती की बजाय हमने ऑर्गेनिक खेती यहाँ पे करने की कोशिश की है और हमारा रिजल्ट काफी अच्छा रहा है यहाँ पे जो है, क्योंकि किसान का संबंध पशुओं से होता है
1: जी।
0: तो पशुओं का गोबर मूत्र वगैरह सब जो है बल्कि खाद बनता है, खाद से उस खाद को अगर हम सीधा सीधा खेत में ले जाए और उसमें वो खाद को मिट्टी मिला दें तो हमारी जमीन उपजाऊ भी होगी और दूसरा जो उत्पादन होगा वो भी बहुत उमदा होगा, बहुत अच्छा होगा
1: जी।
0: तो हम लोग जो है यहाँ पे जो है सब्जियों की खेती करके जिसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां जैसे बैंगन है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है और प्याज है
1: जी,
0: और लहसुन है
1: जी,
0: इन सब की खेती करके हम लोग मतलब जल्दी लाभ ले सकते हैं
1: जी।
0: क्योंकि जब हम वैसी खेती करते हैं जैसे गेहूं बाजरा अनाज जो खेती करते हैं इसमें बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन सब्जियों में क्या है समय कम लगता है
1: जी,
0: कम मेहनत की आवश्यकता पड़ती है और जल्दी ही उत्पादन शुरू हो जाता है
1: जी।
0: तो हम इसको बड़े स्तर पर भी कर सकते हैं अगर हम बड़े किसान हैं, अगर हम छोटे किसान हैं तो छोटे छोटे स्तर पर टुकड़े में जब खेत को बांट के और विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगा सकते हैं। और मैं तो ये सलाह देता हूँ कि ऑर्गेनिक खेती पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती हमारे लिए हानिकारक नहीं है, हमारी भूमि के लिए भी हानिकारक नहीं है
1: जी जी।
0: तो हम लोग को जो है केमिकल खेती छोड़ देनी चाहिए, मतलब मेरा सुझाव है कि केमिकल खेती छोड़ के हम लोग पुराने अपनी पुरानी व्यवस्था पे जाएं, जो जैसे पुराने समय में हम लोग ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, हम केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन आज हम फिर हमारा देश हमारा प्रदेश जो है उसी तरफ वापस लौट रहा है कि हम ऑर्गेनिक खेती जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही हमारे लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है। और मेरी तरफ से ये सुझाव है कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा सब्जी उगा के और जो भी विश्वविद्यालय की तरफ से जो भी आपको सुझाव चाहिए कुछ आपको जानकारी चाहिए तो हम उपलब्ध है यहाँ पे
1: जी।
0: और हम अपने बुंदेलखंड के सभी किसानों के लिए जो है पूरा कोशिश करेंगे कि जो भी हमसे मेहनत हो सकेगी हम जो भी जानकारी दे सकते हैं बेहतर से बेहतर जानकारी दे सकते हैं हम उपलब्ध रहेंगे
1: जी। और हम सर एक चीज जानना चाहेंगे क्योंकि बुंदेलखंड में हम देखते हैं कि हमारे बहुत से युवा साथी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, किसानी से खेती से जुड़े हुए हैं, लेकिन समस्या बहुत ज्यादा ये आती है कि वो चाहते हैं कि खेती को किस तरीके से व्यावसायिक तरीके से जोड़ा जा सकता है। क्योंकि आपने सब्जियों का सुझाव दिया है तो हम जानना चाहेंगे कि इस बुंदेलखंड में ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिससे कम लागत लगती है और मुनाफा बहुत अधिक रहता है।
0: जी जी सर, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फूल गोभी और पत्ता गोभी बैंगन ये सबसे यहाँ अच्छे होने वाली सब्जियां हैं, क्योंकि मैं मार्केट में देखता हूँ मतलब जो है मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बैंगन का उत्पादन बहुत अच्छे से हो जाता है, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ा एडवर्स है, विपरीत कंडीशन है तो उसको ज्यादा केयरिंग की आवश्यकता नहीं होती बैंगन की सब्जी जो होती है। और अपना जो फूल गोभी है, पत्ता गोभी है और जो है मिर्च है, पालक है और आपका धनिया है, हरा धनिया
1: जी,
0: और तमाम ऐसी सब्जियां हैं जिनको उगाकर हम जीवन यापन कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि ये समय इनमें कम लगता है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि इसमें समय बहुत कम लगता है और समय कम लगने की वजह से हमें पता ही देखो हमारे किसान जो है इतना भी सक्षम नहीं है कि भाई ये उसने धान लगाया छह महीने बाद आया, धान वाले यहाँ नहीं होता है, फिर भी जैसे गेहूं है टाइम टेकिंग है, गन्ना है बहुत टाइम टेकिंग होता है
1: जी।
0: तो इसीलिए सब्जी क्या होती है जल्दी जल्दी उत्पादन देती है, जल्दी जल्दी करने में इजी रहती है, ज्यादा प्रैक्टिस जो है नहीं करनी पड़ती, ज्यादा कल्चरल क्रियाएं जो है जो कुशल क्रियाएं होती है वो नहीं करनी पड़ती, निराई गुड़ाई और बस ये थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता, क्योंकि साकीय पौधे होते हैं सब्जियां और इनको समय समय पर पानी की उपलब्धता होती रहनी चाहिए। जब भी लगता है कि फ्लावरिंग हो रही है, फ्लोटिंग हो रही है, तो पानी देते रहना चाहिए। बाकी ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे अपना जो है जल्दी जल्दी पैसे कमा के अपने घर का जीवन यापन कर सकते हैं। और जब हम बड़े किसान हैं, हम उसको कमर्शलाइज करके मतलब जो व्यावसायिक तौर से भी हम उसको उगा के लाभ कमा सकते हैं। दूसरी बात कि अगर हम छोटे स्तर के किसान हैं तो हम लोकल मार्केट के आधार पर सब्जी का उत्पादन करना चाहिए, जिससे कि हम लोग जो है जिनकी डिमांड कम है, क्योंकि यहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा मीडियम टाइप का है। यहाँ का जो गांव का किसान है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ, तो लोकल मार्केट के हिसाब से हमें छोटी छोटी सब्जी उगानी चाहिए छोटे स्तर पर, जिसको एक छोटा किसान भी उगा सकता है और छोटी सी मार्केट में बिक भी जाता है। और जो हमारे बड़े किसान है वो लोग जो है मार्केट गार्डन कर सकते हैं, जो मार्केट के आधार पर खेती की जाती है उसको मार्केट गार्डन कहते हैं, या ट्रक गार्डन कहते हैं, जो डिस्टेंस मार्केट के लिए एक बड़े भूभाग पर जो हम खेती करते हैं वो जो है वो दूर दूर दराज के क्षेत्रों के लिए होता है। जैसे हम यहाँ से दिल्ली, हम दिल्ली देखता हूँ कि चना भी बहुत जाता है दिल्ली हरा चना तो चने की खेती करके भी हम लोग जो है काफी लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि चना जो है कम पानी चाहने वाली सब्जी है, सब्जी मान लीजिए साग बनता है।
1: बिल्कुल सर,
0: तो आप ये यहाँ से चना उगाते रहे, यहाँ से दूर मार्केट के लिए जो है यहाँ से सीधा सीधा सब्जी का उत्पादन करके उसको वहाँ भेज सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है।
1: जी, यहाँ पर सर अगर मौसम की बात करें, चूंकि मौसम परिवर्तन होता रहता है, तो हम ये देखते हैं कि काफी सब्जियां उगाने वाले भी परेशान हो जाते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरीके से वो अपनी सब्जियों को एक वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन करके अपने आय को बढ़ा सकता है?
0: जी जी सर, इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हम कोई भी खेती करने जाएं, उससे सबसे पहले हमें अपनी भूमि की जांच करा लेनी चाहिए, अपनी सोयल की टेस्टिंग करा लेना चाहिए। उसके आधार पर जब हमें पता चलता है कि हमारे भूमि में मृदा में तो कौन कौन सी कमी है, कौन से पोषक तत्व कमी है, उसको जांच करा के उसके बाद ही जो है हम जो है उसमें कोई भी अगर हम रासायनिक खाद मतलब उसमें दे रहे हैं तो वो भी उसकी मात्रा के आधार पर देना चाहिए, और अगर ऑर्गेनिक दे रहे हैं तो वो ज्यादा लाभदायक है। और वो उससे क्या होगा कि वो एट द टाइम ऑफ सोइंग या एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फील्ड, मतलब भूमि की तैयारी करने के समय हम उसमें जो खाद डालते हैं देसी खाद, और उसके बाद हमें जो है साइंटिफिक सीड लेना चाहिए, वैज्ञानिक बीज लेना चाहिए, मतलब किसी रजिस्टर्ड संस्था का बीज लेना चाहिए, कोई ऐसा बीज नहीं लेना चाहिए जो कहीं से भी ऐसे किसान से ले लिया और हमने उगा दिया। हमें हमेशा एक रजिस्टर्ड संस्था से, जहाँ से वो जो बीज के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल है फर्म्स, तो हमें वहां से बीज लेना चाहिए और उसको सही वैज्ञानिक तरीके से हमें जो है उसकी जुताई करके उसका जो भी प्लांटिंग सिस्टम हो, जो भी इरिगेशन सिस्टम हो, उसको फॉलो करना चाहिए। और मैं सलाह देता हूँ कि स्प्रिंकलर जो मेथड ऑफ इरिगेशन है उसको ज्यादा फॉलो करना चाहिए, या फिर ड्रिप इरिगेशन जो है जो बूंदी सिंचाई होती है सब्जियों में उसको भी उत्पादन मतलब उसको लगा के उसको कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है। दूसरी बात यह कि पानी की यहाँ कमी है, तो हमें जो है जो बौछारी सिंचाई है या हमारी बूंदी सिंचाई है वो उसको ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ बुंदेलखंड में यहाँ पानी इस बार बहुत गिराया, लेकिन पहली बार चार सालों में पांच सालों में बहुत कम पानी
1: जी।
0: तो ऐसे केस में सब्जी उगाना बहुत टिपिकल होता है, हार्ड होता है
1: जी।
0: तो ऐसे केस में ऐसी सब्जी को उगाना चाहिए जो कम पानी चाहने वाली
1: जी,
0: है
1: जी, जी।
0: जैसे मैंने बताया कि जो बैंगन का पौधा है काफी हार्ड होता है
1: जी,
0: तो हार्ड पौधे होते हैं वो कम पानी चाहते हैं
1: जी,
0: लेकिन जो साक्षी और जो पालक है
1: जी
0: ज्यादा से ज्यादा पानी
1: चाहिए।
0: तो हमें ऐसी सब्जी ज्यादा उगाना चाहिए जो हार्डी नेचर की हो, जो हार्ड हो, जो आसानी से पानी की कमी को झेल सकती हो
1: जी,
0: तो ऐसे करके हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं
1: जी। और चलते चलते सर, हमारे युवा साथी जो आपको सुन रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: सबसे मैं अपने सभी युवाओं से ये आग्रह करता हूँ या निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग जो है एग्रीकल्चर को बढ़ाइए, एग्रीकल्चर बढ़ाइए और एग्रीकल्चर पढ़िए, क्योंकि एग्रीकल्चर का स्कोप है आज के टाइम में, आने वाले भविष्य जो है वो एग्रीकल्चर का ही होगा, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे केमिकल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो जिन लोग केमिकल की तरफ जा रहे हैं उन्हें नुकसान हो रहा है, और जैसे जैसे हम लोग ऑर्गेनिक पाएंगे किसानी करेंगे और एग्रीकल्चर को खेती को जो है एग्रीकल्चर बेस्ड टेक्नोलॉजी से करेंगे, नई नई टेक्निक से करेंगे, तो उससे हमें ज्यादा लाभ होगा और हमारे सभी जो है जितने भी युवा है सब एग्रीकल्चर करके बहुत भविष्य बना सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि एग्रीकल्चर बीएससी से इतनी वैकेंसी आई इतनी बहुत सारी, तो बीएससी एग्रीकल्चर करें और उसको एग्रीकल्चर करने के बाद अपने घर पे भी इसको फॉलो करें और अपने कैरियर को बढ़ा सकते हैं
1: जी, जी।
0: तो ये हमारे कृषि का ये भविष्य है
1: जी।
0: और सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, फ्लावर उत्पादन, इसको करके हम जो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। और मैं चलते चलते ये बात भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप सब्जी उगा रहे हो, सब्जी तो उगाइए, साथ साथ में फूल भी उगाइए, क्योंकि अगर सब्जी कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो

0: बार फिर से साथियों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर हरपाल सिंह जी को, जो कि आपको बता रहे थे कि किस तरह से हम वैज्ञानिक तरीके से एक खेती करके और साथ में सब्जियों का व्यवसाय करके एक कैसा मुनाफा कमा सकते हैं।
1: बिल्कुल, उन्होंने साथ में ये भी बताया कि किस तरीके से इस बुंदेलखंड क्षेत्र में किस किस प्रजाति की सब्जियां को उगाकर हम अपने व्यावसायिक तरीके से इसमें मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि हम और आप देखते हैं कि इस बुंदेलखंड क्षेत्र में अगर बात करें बैंगन की, बात करें प्याज की, बात करें गोभी की, तो इसकी खेती सबसे ज्यादा होती है। तो ऐसे सब्जियां उगाकर, क्योंकि 2 और 3 महीने की ये सब्जियां रहती हैं, तो 2-3 महीने में हम अपने खेतों में छोटे छोटे खेत की क्यारी बनाकर उसको लगाकर यदि हम बाजार में पैकिंग कर उसको बेचा जाए तो बहुत अच्छा मुनाफा होगा और इससे ढेर सारी आपकी इनकम भी जनरेट होगी। तो हम ऐसे व्यवसायों को चिन्हित करें जिसमें लागत भी कम लगती है और मुनाफा बहुत अधिक होता है।
0: बिल्कुल, और साथ में डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात जो बताई है कि जब भी आप अपने खेतों में कोई भी फसल या कोई भी सब्जी लगाना चाहते हैं उससे पहले मृदा परीक्षण आप जरूर करवा लें, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी मिट्टी में कौन से तत्वों की कमी है और कौन सी खाद आपको उसके लिए डालना सही होगा।
1: बिल्कुल, और दूसरी अगर बात करें ऑर्गेनिक पद्धति की, बात करें कि जैविक पद्धति से यदि आप खेती करते हैं और उसमें सब्जियां उगाते हैं, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि जो अभी केमिकल भरी खाद हम इस्तेमाल करते हैं और केमिकल भरी खातों की सब्जियां जो हम खाते हैं, तो उसमें हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा गहरा असर पड़ता है। तो ऐसे में यदि हम ऑर्गेनिक पद्धति से, जैविक पद्धति से यदि हम खेती कर सब्जियां उगाए तो इसका भाव भी आपको अच्छा मिलेगा और उसमें पैदावार भी अच्छी होगी और उसमें मुनाफा भी बहुत अच्छा होगा यदि हम ऑर्गेनिक पद्धति से करेंगे।
0: बिल्कुल सही कहा है आपने मनीष जी, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि कोई भी चीज हो, चाहे वो फलों की बात कर ले या सब्जियों की बात कर ले, तो जल्दी से जल्दी हमें कैसे मिल जाए इसके लिए भी कई तरह की केमिकल्स वगैरह चलते हैं, इंजेक्शन जो लगा के सब्जियों में, एक ही रात में सब्जियां बड़ी हो जाती है, उनको सुबह अपन बाजार में बेच भी सकते हैं। तो ऐसी सब्जियों से कोशिश करें कि आप बचें, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है। और अगर कोशिश कर सके आप तो घर में ही अपनी एक क्यारी बनाकर उससे भी आप सब्जियां, रोज की जरूरत वाली चीजें जैसे मिर्ची है, धनिया है, टमाटर है, इनको गमलों में लगाकर भी आप उगा सकते हैं। लेकिन अगर व्यवसाय तरीके से आप करना चाहते हैं तो फिर आप जरूर मिट्टी का परीक्षण करवाएं, इसके बाद ही आप अपने खेतों में कोई अच्छी सब्जी और सब्जियों के साथ में आप फूलों की भी खेती कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक तरफा आपको मान लीजिए सब्जी में कहीं ना कहीं छोटा बहुत घाटा अगर होता है, तो वो फूलों के माध्यम से आपका बराबर का लेवल आ जाएगा।
1: चलिए, अब हमारा बरसा समय होता है इस कार्यक्रम आजीविका से विदा लेने का, क्योंकि हमारी बातचीत भी बहुत हो चुकी है और हमारे साथियों को बहुत अच्छी बातचीत भी लगी होगी, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि छोटी से छोटी बातें आप लोगों तक पहुंचे और उस बातों को आप अपने जीवन में उतार कर इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लाभ लें। तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप जब हमें फीडबैक देंगे कि आपके कार्यक्रम को सुनकर हमने इस कार्य को किया है और अपनी आय में वृद्धि की है।
0: बिल्कुल, आपने जो एक बात कही थी कि बहुत ही अच्छी बातें हमारे साथियों को लगी होंगी, तो ये पता हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो तभी पता चलेगा जब हमारे साथ ही हमें फोन के माध्यम से या फिर पत्र के माध्यम से अपनी राय और सुझाव इस कार्यक्रम के बारे में देंगे। क्योंकि साथियों, आप जब हमें राय और सुझाव देंगे तो हम उसके हिसाब से आपके लिए और बेहतर कार्यक्रम कैसे बना सकते हैं इसके भी सुझाव आप हमें दे सकते हैं। तो जल्दी से हमारा पता नोट कर लीजिए जिस पर आपको पत्र लिख के ये बताना है। इसके लिए हमारा पता होगा
1: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगेला के पास ओरछा।
0: साथियों, हमारा फोन नंबर भी है जिसके माध्यम से आप अपनी राय, सुझाव और कार्यक्रम का फीडबैक, और इसके अलावा भी आप अगर कुछ और बात करना चाहते हैं, जैसे कोई नए व्यवसाय के बारे में आप बताना चाहते हो, या फिर आजीविका कार्यक्रम से आप जुड़े रहने के बाद आपने क्या बदलाव किया है अपने जीवन में, अपने पर्यावरण में, अपनी आय में, अपने रोजगार में, कुछ भी अगर आपने बदलाव किया है तो आप फोन के माध्यम से भी हमें बता सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर होगा
2: 9219207749।
0: दोस्तों, अब दीजिए हमें इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत, हम जल्द ही आपके सामने फिर से आएंगे, यानी कि रेडियो पर फिर से आएंगे इसी का

0: श्रोताओं नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपके आरजे रेडियो दोस्त वर्षा,
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष, और सुन रहे हैं आप कार्यक्रम
0: हम होंगे कामयाब।
1: और हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम अपने युवा साथियों के लिए तरह तरह के कार्यक्रम इसमें लेकर आते हैं, और खास तौर पर उन छोटी छोटी बातों पर हम बात करते हैं जो हमारे युवा साथियों के लिए बहुत जरूरी रहती है। चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर बात करें, चाहे वो उनके आजीविका को लेकर बात करें, चाहे वो उनके वैकेंसियों को लेकर बात करें, यानी रोजगार सूचनाओं को लेकर बात करें, तो हम तरह तरह के कार्यक्रम इस हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं।
0: और चाहे हम छोटा काम बड़ा मुनाफा की बात करें, ये तो आप भूल ही गए थे मनीष जी।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, और हम अपने युवा साथियों के लिए ये सारे कार्यक्रम हम लेकर आते हैं। आज चूंकि हम मुझे है कार्यक्रम आज सुनेंगे, और इसमें जानेंगे, चूंकि हम और आप देख रहे हैं कि किसान साथियों की अगर बात करें, खेती किसानी का हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया जाता है, और ऐसे में हमारे किसान साथियों की किस तरीके से आय दुगनी हो, तो कैसे दुगनी हो सकती है जब तक हम किसी योजना का लाभ ना लें, या फिर हम लगे कुछ खेती किसानी में अलग करें, यानी आधुनिक पद्धति से किस तरीके से खेती करें। तो आधुनिक खेती अगर हमारे किसान साथी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत सारी स्कीम्स और योजनाएं चलाई जाती हैं शासन की ओर से, जिनका हम लाभ लेकर अपनी आय को हम बढ़ा सकते हैं।
0: बिल्कुल साथियों, और क्योंकि जब कोई योजना चलाई जाती है तो वो हमारे किसान साथियों के लिए ही होती है, अगर कृषि से संबंधित है तो। लेकिन बस जरूरत ये होती है कि उस योजना के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, कैसे हमारे किसान साथी उस योजना का लाभ ले सकते हैं, और कौन से वो किसान साथी हैं जो इस योजना के पात्र हैं।
1: और आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में आज हम जानेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, क्योंकि सिंचाई का अब समय होगा, क्योंकि अब गर्मी का मौसम चल रहा है, और ऐसे में हमारे किसान साथी जो सब्जियां लगाए हैं, या फिर अपनी खेती जो जायज की खेती रहती है वो भी अपनी लगाकर उन्होंने खेतों में लगा दी है, तो सबसे ज्यादा गर्मियों के मौसम में समस्या आती है कि पानी कहाँ से आए, कैसे पानी दे वो, तो पानी पर ही सब कुछ चलता रहता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री कृषि योजना का हमारे किसान साथी लाभ लेकर और अपनी खेती को और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं।
0: बिल्कुल साथियों, और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, तो इसकी शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने की हुई थी, और जिनके द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई थी। इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों को अपने खेती की सिंचाई के लिए उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान की गई थी,
1: और यह सब्सिडी किसानों को उन सभी योजनाओं के लिए भी प्रदान की जाएगी जिसमें पानी की बचत भी हो, कम मेहनत हो, और साथ में खर्चे की भी सही तरह से बचत कर सके, ऐसे किसानों को अपने खेतों में सिंचाई करने की सुविधा हो, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई है। अब हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि योजना किस तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं, कितना पैसा रहता है इसमें, तो आपको इसके भी बारे में हम जानकारी दे देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अनाज के लिए कृषि सबसे ज्यादा जरूरी रहती है, और कृषि तभी बेहतर होगी जब सिंचाई के अच्छे साधन और संसाधन आपके पास उपलब्ध हो।
0: बिल्कुल साथियों, जैसे कि खेतों में सिंचाई के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है, अगर फसलों को अच्छे से पानी नहीं मिलेगा तो वह किसानों के खेत खराब हो जाएंगे, और जिससे उनकी फसल अच्छी नहीं

0: कृषि सिंचाई योजना 2022 के तहत किसानों की इस समस्या को दूर किया जाएगा और किसानों को उनके खेतों के लिए पानी की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप, ट्रस्ट, सहकारी समिति, कॉपरेटिव जो कंपनियां रहती हैं उनके माध्यम से उत्पादक किसानों के समूह के सदस्यों और अन्य पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्यों को भी लाभ प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के तहत केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत 50,000 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है
1: और यह राशि वर्ष 2026 तक इसका विस्तार इसका किया जाएगा। और साथ साथ में 15 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 5 वर्ष के विस्तार के लिए 2026 तक संचालित करने का इसमें निर्णय लिया गया था। और साथ साथ में आपको एक जानकारी और देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप प्लांट लगाने पर 70% सब्सिडी की राशि बागवानी किसानों को प्रदान की जाएगी और साथ साथ में 50% सब्सिडी की राशि जो सीमांत किसान रहते हैं उनको प्रदान की जाएगी। और इस बात की जानकारी डिप्टी डायरेक्टर जो रहते हैं कृषि विभाग के उन्होंने ये साझा की है। इसके अलावा फाउंटेन प्लांट की खरीद पर 60% की सब्सिडी छोटे और सीमांत किसानों को प्रदान की जाएगी, साथ साथ में 50% की सब्सिडी अन्य किसानों को प्रदान की जाएगी। और इस योजना को लाभ उठाने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह ऑनलाइन आवेदन राज किसान साथी पोर्टल पर ई मित्र के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन पत्र भरने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ती है वो भी आपको साझा कर देना चाहते हैं कि इसमें जो जमाबंदी रहती है, ट्रेस माप रहती है यानी जो आपकी खसरा खतौनी की नकल रहती है, साथ साथ में प्लांट कोटेशन जो रहता है आप किस चीज का प्लांट डालना चाहते हैं उसका कोटेशन भी आपको लगेगा, सॉयल वाटर टेस्ट रिपोर्ट जो रहती है वो कृषि विभाग द्वारा दी जाती है, साथ साथ में बिजली का बिल, आधार कार्ड आदि होना आपके पास अनिवार्य है। और इस योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रदान किया जाएगा और यह 15 सितंबर 2021 से ये लागू किया गया था। और हर खेत को पानी योजना के लिए आर्थिक सहायता भी इसमें शामिल की गई है।
0: जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य सिंचाई उपकरण खरीदने पर सब्सिडी मुहैया कराना है जिससे कि खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। यह योजना किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए भी कारगर साबित होगी। इस योजना को देश के विभिन्न जिलों में होने वाली पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए आरंभ किया गया है जिससे कि फसल की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के अंतर्गत हर खेत को पानी योजना आरंभ की गई है। हर खेत को पानी योजना के माध्यम से सरकार द्वारा सभी खेतों को पानी मुहैया कराया जाएगा जिसके लिए कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस वित्तीय सहायता का उपयोग करके किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी जिससे कि उनके खेतों तक पानी पहुंच सके। अब इस योजना के माध्यम से खेती करने के लिए किसानों को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
1: अब बात आती है कि प्रधानमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत जो 1706 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए हैं उसके भी बारे में हम जिक्र करेंगे। साथ साथ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 का उद्देश्य क्या है उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ में प्रधानमंत्री अधिक फसल प्रति बूंद योजना इस पर भी, चूंकि खेती के साथ ही जुड़ी योजना है, इस पर भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की विशेषता इस पर भी हम चर्चा करेंगे, इसका लाभ कैसे ले सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक अच्छे से गीत को सुन लेते हैं। बने रहिए आपके अर्जे मनीष
0: और आपके रेडियो दोस्त वर्षा के साथ में, सुनते रहिए कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। मुझे

0: का रेडियो अपनी बातें रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पर श्रोताओं एक बार फिर से आप सभी को बताना चाहते हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में मुझे हक है, जिसमें हम जान रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के बारे में।
1: और साथ ही जैसा कि हमने बताया था कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 1706 करोड़ रूपए अप्रूव किए गए हैं, उसकी सहायता के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस योजना के अंतर्गत खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा और मुख्यमंत्री अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग 22 दिसंबर 2020 को संचालित की गई थी और इस मीटिंग में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 1706 करोड़ रूपए आवंटित भी किए गए थे। मध्य प्रदेश का इसमें 682 करोड़ रूपए और 40,40,000 रुपए का शेयर भी है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया और सिंगरौली जिले शामिल भी हैं। अब हमारे श्रोता साथी सोच रहे होंगे, हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री कृषि योजना का उद्देश्य क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर फसल को उचित मात्रा में पानी नहीं मिलेगा तो वो खराब हो जाएगी और हमारे देश के किसान किस पर निर्भर रहते हैं, वो भी पानी पर निर्भर रहते हैं, सिंचाई पर निर्भर रहते हैं। तो ये कदम प्रधानमंत्री जी ने उठाया है और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से ज्यादा बल जल संसाधनों को अधिकतम उपयोग है ताकि बाढ़ और सूखे के आवेग से होने वाले नुकसान की रोकथाम ये कर सके, साथ साथ में उपलब्ध संसाधनों को कुशल उपयोग हो सकेगा और साथ में किसानों की हमारी पैदावार भी बढ़ सकेगी। प्रधानमंत्री अधिक फसल प्रति बूंद योजना, इसमें मुद्रा प्रति बूंद योजना 5 वर्षों के में देश के खेती वाले क्षेत्र के विस्तार करेगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देश में हर जगह पानी

0: मुहैया कराएगी और देश की फसल राशन को बढ़ावा देगी। यह देश के किसानों के जीवन स्तर में सुधार करेगी और इस प्रधानमंत्री योजना के तहत प्रति फसल योजना के तहत अधिक फसल जल प्रबंधन प्रणाली का प्रबंधन भी करेगी। अब विशेषताएं क्या क्या है वो भी आप जान लीजिएगा।
1: शुदा सरकार द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एवं उनकी आय में वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को भी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से सभी खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार इस योजना के अंतर्गत पानी के सोर्स जैसे कि जल संचयन, भूजल विकास आदि का निर्माण करवाएगी। इसी के साथ यदि किसान द्वारा सिंचाई के उपकरण खरीदे जाते हैं तो उनको सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से समय और पैसे दोनों की बचत होगी। सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई आदि का भी बड़ा महत्व है इसमें और उस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। यदि फसलों के सही प्रकार की सिंचाई प्राप्त होगी तो पैदावार भी बढ़ोतरी होगी। इस योजना का लाभ वह सभी किसान उठा सकते हैं जिनके पास खुद की जमीन और उस जमीन पर वो खेती करते हो, जल का स्रोत हो। इसके अलावा वह किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं या सरकारी सदस्य हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ प्रदान कर सकते हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। सरकार द्वारा सिंचाई के उपकरण खरीदने पर इस योजना के अंतर्गत 80% से 90% तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
0: अब हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि इसमें और क्या जानकारी हम उपलब्ध करा सकते हैं, तो बता देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो कंपोनेंट है वो है कन्वर्जेशन विद नरेगा, यानी कन्वर्जेशन जो रहता है नरेगा का उसके माध्यम से आपको पैसा मिल सकता है। वाटरशेड परियोजना के माध्यम से मिल सकता है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, अदर इन्वेस्टमेंट पर भी पैसा हम निकाल सकते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन, हर खेत के पानी खेत में, इस पर भी हमारे इस योजना को रखा गया है। पात्रता क्या होनी चाहिए? इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए और इस योजना के पात्र लाभार्थी देश के सभी वर्ग के किसान होंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप भी होंगे, ट्रस्ट भी होगा, सहकारी समितियां होंगी और जो कोऑपरेटिव कंपनियां जो रहती हैं उनके उत्पादक कृषकों के समूह यानी एफपीओ के सदस्य भी इसमें रहेंगे और अन्य पात्र जो पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्य भी इसका लाभ ले सकते हैं। अब दस्तावेज क्या क्या लगना चाहिए इसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के दस्तावेज जो है वो इस प्रकार से है, आपको जरूरत पड़ेगी आवेदक का आधार कार्ड, पहचान पत्र, किसानों की जमीन के कागजात, जमीन की जमाबंदी, खेत के नकल, बैंक अकाउंट पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर।
0: और हमारे साथी सोच रहे होंगे कैसे आवेदन करें, तो योजना की जो जानकारी हर किसान तक पहुंचाने के लिए आधिकारिक पोर्टल स्थापित किया गया है। यहाँ पर योजना से संबंधित हर जानकारी विस्तार पूर्वक तरीके से बताई गई है। पंजीकृत या आवेदन के लिए राज्य सरकार अपने प्रदेश के कृषि विभाग की वेबसाइट पर आवेदन ले सकती है। अगर आप योजना के आवेदन के लिए इच्छुक हैं तो अपने प्रदेश के कृषि विभाग के वेबसाइट पर जाकर आवेदन संबंधित जानकारी ले सकते हैं और प्रतिक्रिया जो इसमें रिपोर्ट देखने की प्रतिक्रिया जो रहती है वो भी आप ध्यान से सुनी हुआ।
1: बिल्कुल साथियों, MIS रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया जो है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। इसके पश्चात आपको MIS रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने निम्नलिखित ऑप्शन खुलकर आएंगे, जैसे अचीवमेंट रिपोर्ट, कंसोलिडेट एक्टिविटी बाय OTF, वन टच फॉर्मेट, DIP डॉक्यूमेंट अपलोडेड, पर ड्रॉप मोर क्रॉप डैशबोर्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PDMC MI वर्क।

0: सिस्टम ड्रिप डाउन प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको अपनी आवश्यकता अनुसार विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा। इस पेज पर आपको पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी। अब आपको व्यू के विकल्प पर क्लिक करना होगा। संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी।
1: तो ये सारे

0: पूछना होगा और ऑनलाइन इसके आवेदन जमा करने होंगे। तो ये जानकारी आप ने जो हमने कार्यक्रम के माध्यम से बताई है, तो हमारे किसान साथी इसका लाभ ले सकते हैं। और साथियों, अब हमारा वक्त भी हो रहा है आज के इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने का। तो इस पर यदि आपको कोई विचार देना है या टिप्पणी करना है या फिर आपको फीडबैक देना है तो दे सकते हैं हमारे इस नंबर पर।
1: हमारा नंबर है
2: 92 19 20 77 49।
0: तो आपके रेडियो साथी मनीष
1: और आपकी रेडियो दोस्त वर्षा को दीजिए जाने की अनुमति। हमारी और आपकी फिर होगी मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

जी भैया हरो नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आ गई है आपकी अपनी रेडियो दोस्त वर्षा लेके आपके लाने कार्यक्रम अम्मा के चौके से। जी हाँ साथी हरो, अम्मा के चौके कार्यक्रम में आप सब जने जाना थेंगे कि अपन अपनी सेहत से जुड़ी हुई बातचीत करे थेंगे और ऐसी रेसिपियन को जाना थेंगे जो अपने लाने आसान हो गए और जिनको अपन आसानी से खा पावे है कि नहीं। तो देखो भैया और आप सबको बता देंगे कि मौसम में बदलाव को असर हमारे खान पान पे सबसे ज्यादा परिवर्तन लेके आउट है को। और अगर ई मौसम की बात कर ली तो ई मौसम में फल हमें पोषण तत्व देतेंगे, जैसे कि हर मौसम को एक फल होता ही, सो ऐसे ही ई मौसम के भी कछु फल हैंगे जो खावे से अपन को पोषण तत्व भरपूर मात्रा में मिल सकते है जो अपने शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं। ई मौसम में तापमान और गर्मी की असर को कम कर भी किलाने फलन के राजा आम के संगे संगे तरबूज, खरबूज, लीची, स्ट्रॉबेरी, आलू बुखार, बेल और ऐसे कई तरह के फल हैंगे जिनको खावे से पर्याप्त मात्रा में जो है अपन को प्रोटीन और पोषण मिलत है गो। और भैया हरो देखो आप सबको बता देवे कि गर्मी बहुत ही ज्यादा पड़ रही, राम भाई घाम देखी से तो बुखार से चढ़त जा लगत के बाहरी को कोनो काम ना मिलवे, बस कूलर पंखा में बैठ के अंदर ही अंदर को काम कर लेवे। लेकिन का है कि काम काज करवी के लाने बाहर तो निकल नहीं आते हैं, सो अपनी अपनी देखभाल अपन और अनखो कर बहुत जरूरी है वो। और जब भी घर से बाहर निकलवे तो देखो हम वीर वीर आप सब जनन से कहेंगे कि मुड़ी खो ढांक के रख दे, चाहे स्टोल से ढांक ले बे, चाहे भैया हरो दुपट्टा से। अब दुपट्टा को मतलब जो नहीं है कि पतरो से दुपट्टा ले लो, अच्छो मोटो से हो गए दुबला उतर करके डाल लो खो, ऐसे दुपट्टा डालने अपन को ठीक है। और अगर देखो आंखन पर चश्मा लगा लो तो भी आप घाम से भी बच सकते हैं। तो भैया हरो आप सबसे क्या वो चाहते है कि घाम बहुत तेज पड़ रहा है वो ध्यान रखो अपनो तना को और बाली बच्चन को रखो। बाली बच्चन को कहा है कि अब देखो भी तो नहीं जाना थेंगे कि हमारे लाने का सही है का गलत है वो, सुबह जिद कर लगा थेंगे बाहरें खेलवे की। अब ऐसी घाम में बिल्कुल आप उनको अनुमति ना दो कि भी बाहरें जाके खेलवे, आप तो बस उन्हें सुबेरे शाम जो ठंडो ठंडो मौसम होते उन्हें खेलवे के लाने को और घाम में तो बिल्कुल ही ना न करन दो आप बाहर अंदर ही बैठा रहो, अंदर ही बैठ कर उनके संगे पढ़ाई करवाओ, उन्हें खावे पीवे में बिदाए रहो, जैसे जो पोषण वाली चीजें होती हैं अच्छी अच्छी चीजें भी उन्हें खवाओ। जी नहीं खवाने आपको के नमकीन खुआ दो और समोसा खुआ दे, जलेबी भजिया ऐसी चीजें नहीं खुआने हैं, जो उनके लाने जरूरी है वे चीजें खवाओ जिनसे उनको पोषण मिलवे, जिनसे उनको शरीर ताकतवर बनबे है और ये लपट से बचा रहे। अब देखो अमिया को पन खूबे चल लो ट्रेंड में है वो, करनी लगत के नई रिलाई ट्रेंड में चल रही, सो ऐसी ट्रेंड में अब अमिया को पनो चल लो बढ़िया, सो अमिया को पनो भूंज के बढ़िया अमिया को पनो बना कर खुआओ है, प्याज डाय दू में खूबे बिला ताकि उनको लपट ना लगे। इन सब चीजों को अपन को ध्यान रखने हैं, काहे कि अपने को ही जिम्मेदारी होती कि अपन इनको ध्यान रखवे ठीक है। तो आज के कार्यक्रम अम्मा के चौके में साथी भैया हरो हम आपको बताएंगे कि सेहत को साथी है वो ई मौसम की फल। और फलन की अगर बात करें तो बहुत सारे फल ऐसे होते हैं जिनको अपन उन्हें खा सकते हैं, जिनको खाए से अपनो स्वास्थ्य भी अच्छो रहे, अपन को पोषण भी भरपूर मात्रा में मिले और ई मौसम से बचा के भी अपन को रखे। ई मौसम में तापमान और गर्मी के असर को कम करने के लाने फलन के राजा आम की तो बात अपनी कर ही रहेंगे, संगे संगे में अपन करें तरबूज, खरबूज, लीची, स्ट्रॉबेरी, आलू बुखार और

0: स्वास्थ्य की भी बात करें, ठीक है। अगर अपन स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो हमें फलन को अपने आहार को एक हिस्सा बना लें जी, ठीक है। इनके सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हैगी अपनी बाभी मजबूत होतेगी और संगई में स्वास्थ्य की जो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होतेगी उनसे भी जो बचाव थे अपन और अनखो, ठीक है भैया। सो का करने अपन को कि गर्मी के फल जो हैंगे भी बीटा कैरोटीन कैरोटेनॉयड और खनिज तत्वन से भरपूर होते हैं। ऐसे में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जो फल फ्री रेडिकल्स को कम करके हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाव देंगे। केवी को मतलब है को कि गर्मियन में इन फलन को सेवन करने से अपन और स्वस्थ रहेंगे और आजकल होने वाली जो बीमारी है उनसे भी अपन बचाव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब फल कौन कौन से हैं और उनके पोषण तत्व का कहेंगे भी हम आपको आगे कार्यक्रम में जरूर बताएंगे। इतने साथ ही यारो अपन सुन लेते हैं एक बढ़िया से लोकगीत को, साथ ही में आज के कार्यक्रम में अपन जो भी जाने के योग कर वो भी अपने लाने कितने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं वो, ठीक है। तो बने रहो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा के संगे, सुनत रहो कार्यक्रम अम्मा के चौकी से। आओ अपन और सुनाएंगे एक बढ़िया से लोकगीत को।
1: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल, वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन बचाओ। पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल, वृक्षों को कटने से बचाओ।

0: जब श्री कृष्ण भगवान नहीं मिले तो देखो गोपी ने क्या कार्यक्रम किया।
1: ए घर घर झूठ फिरती है श्याम को, घर घर झूठ

0: वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन बचाए।
1: साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आप सबको बता देंगे कि हम हेंगे आपके संग, आपकी रेडियो दोस्त वर्षा लेके हाजिर हैं कार्यक्रम अम्मा के चौकी से। जी हाँ साथियों, अम्मा के चौकी में अपन हो रहे जान रहे हैंगे कि सेहत के साथ ही हेंगे ई मौसम के फल। तो प्राकृतिक मौसम में बदलाव के संगे जो आत है भी अलग अलग किस्म के फल भी आते हैंगे और जिनको स्वाद भी ई मौका के लाने बहुत अच्छे होते हैं। स्वाद के संगे संगे पौष्टिकता से भरपूर होते हैंगे जे फल, आपको हमेशा सेहतमंद और मौसमी बीमारियों से भी जे बचाऊ थेंगे, इनकी बड़ी भूमिका इनमें रहेगी। तो साथियों अब जैसे देख रहे हैंगे कि तरबूज खूब ही खूब बिक रहा है बाजारन में और अपने सब साथी चाव से खाउत भी हैंगे इको, तो इके पोषण तत्वन के बारे में अपन कछु बातचीत कर ले अपने साथियों से। इनमें पोषण तत्व के संगे 92% पानी होते है वो तरबूज में मौजूदा विटामिन ए सी और बी भी होते है वो, और इके अलावा आप सबको बता दी गए कि एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपेन जो कि हृदय और हड्डियों को सेहतमंद बनाते है वो। संदेह में साथियों मधुमेह रोगी भी सीमित मात्रा में खा सकते हैं, यानी कि जो मधुमेह के

हार हमारे साथ ही हैंगे। देखो खावें तो लेकिन सीमित मात्रा में, ठीक है। तरबूज को सेवन कर सकते हेंगे भी, और मतलब कभी कभी ऐसा होते ना उन्हें लगत कि अरे जो मीठो है को और हम नुकसान ना कर जावे हमें, हम खे के नहीं खे, तो वे खा तो सकते ही लेकिन सीमित मात्रा में खावे। और अगर देखो आपकी मधुमेह ज्यादा ही खराब है तो फिर आप बिना डॉक्टर की परमिशन के बिल्कुल भी नहीं खाइयो। लेकिन जिन साथियों को ऐसी कोई समस्या नहीं है वे भरपूर मात्रा में इको खा सकते हैं लेकिन लिमिट में, उनके लाने भी सीमित चीजें होती है भैया, अति कोनो भी चीज की अच्छी नहीं होती, ठीक है। अब अगले नंबर आते गो आम को, जो कि फलन को राजा जी खू कही जाऊ थेगी कत के नहीं कदई। इनमें सबसे ज्यादा पाए जावे वाले जो है वे विटामिन ए और सी, फोलेट व फाइबर सेहत के लाने बहुत ही फायदेमंद होते हैं। आम जो है वो हाई ग्लाइसेमिक फलन की श्रेणी में आउट है, ऐसे इको सेवन जो है सीमित मात्रा में करने चाहिए। हालांकि इको भरपूर स्वाद लेवी के लाने अब थोड़ा से इंतजार आप सबको करने आए, कहे की अब बाजार में जो है आम आते रहो, लेकिन जब दशहरी आम लगते ना वो बड़ो अच्छो आम लगा थे वो दशहरी को, और सब जने एकदम ललचियाऊ देंगे कि अरे भैया दशहरी आ गई अब तो खा लो, रोक नहीं पा रहे अपने आप को, तो बड़ी अच्छी बात है खाएं जज्जी। लेकिन हर चीज को एक सीमित मात्रा में खाएं चाहिए, तो अपने शरीर को भी फायदा दे और अपन को भी फायदा दे। कोनो भी चीज की अति जो है वह अच्छी नहीं होतेगी। अब अगर साथियों उतना ही हम बात कर ले गए खरबूजा की, तो खरबूजा जो है वो गर्मियों की तपिस कम करवे के लाने, यानी जो गर्मी बहुत भयंकर चल रही है, अरे भैया गर्मी की बात करें तो हमें आकबकी सी झूठा लगा, तो गर्मी की तपिस कम करवे में खरबूजा जो है बेजोड़ है। वो इन्हें कहा होते कि एंटी ऑक्सीडेंट से जो भरपूर होते है वो, और ये फल में फाइबर के संगे विटामिन प्रचुर मात्रा में पाओ जाऊ थे वो। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कारण जो मधुमेह रोगियों के लाने भी लाभकारी होते को, लेकिन मधुमेह रोगी जो है इनको सेवन सीमित मात्रा में ही करवे, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं आप सबको। लेकिन खावे में भी बड़ो स्वादिष्ट होते हैं, क्यों साथी तो अपने पतो का कर रहेंगे कि इनके अंदर यानी खरबूजा के अंदर जो बीजा रहेंगे उन बीजा को जो है सुखा लेते धूप में, पहले डाल देते, धूप तो वैसे ही इतनी तेज पड़ रही है कि अच्छे अच्छे आदमी भी सूख रहेंगे तो ये तो बीजा ही हेंगे। इनको सुखावे के बाद भी क्या कर रहेंगे कि इनके कछूत बीज ऐसी चीज बनाऊ थेंगे जो उन्हें अच्छी लगती, या फिर इन बीजन के अंदर जो एक चीज निकलत है खावे वाली वह बड़ी स्वादिष्ट लगा थेगी। सो ऐसे भी काफी सारे साथी कर रहेंगे, और संगे में जो फल लगावो चाहते हैं कि पेड़ लगावो चाहतेंगे तो बेबी इन्हें बचा के रखत और क्यारियन में ऐसी डाल देते ही। अब हो तो नहीं तो बात अलग हैगी, लेकिन कोशिश तो पूरी कर रहेंगे। अब हम बात करें बैरीज की, तो बैरीज के बारे में आपको बता देंगे कि विभिन्न प्रकार की बैरीज होती हैंगी, जैसे कि ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी आदि। इन सब में जो है फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट की अच्छी मात्रा होतेगी। इनमें मौजूद विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाऊ थे वो, इसे इनको नियमित रूप से जो है अपन को सेवन करें चाहिए। संग में देखो साथी यारो बाजार में जो है आलू बुखार भी देखवे में आउट है वो, और आलू बुखार की अगर बात करें तो कछु दिनन बाद बाजार में जो आसानी से मिलवे वालो है वो। आलू बुखार जो है वो फाइबर विटामिन सी और ए को एक अच्छो स्रोत है वो। जो फल जो है वो ब्लड में ग्लूकोज को नियंत्रित रखत है वो। इको सेवन सेहत के लाने बहुत ही अच्छो मानो जाऊ थे वो साथी यारो। तो जो भी हमारे श्रोता कछु श्रोता साथी इनको तो जो बहुत फेवरेट भी रहते है वो रथ के नहीं रहते, सुबह इको खा सकते हैं, और कछु दरन बाद जो है आलू बुखार आपको बाजार में खूब भरपूर मात्रा में मिले गो। अब ऐसे ही मैं आपको बता दी कि बेल जो होतेगी ये फल में प्रोटीन, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम, फाइबर इति सब पाए जाऊंगे। नियमित अंतराल में बेल को सेवन पाचन तंत्र को मजबूत बनाते है और शरीर को अंदर से ठंडक भी प्रदान करते है। साथी वो क्यों अपने साथी है जो बुजुर्ग लोग होते वे अभी भी हैंगे वे का कहते कि बेल को शरबत बना के पियते। अब बेल को शरबत कैसे बनाते जो हमें नहीं पतो, लेकिन हाँ बेल को शरबत जरूर बनाते भी और उनमें शक्कर डाल के पिए थे जो भी कहते कि बहुत फायदेमंद होते वो, और खास तौर से ऐसे घाम से बचाऊ थे ऐसी गर्मी के मौसम में बचाऊ थे, ठीक है। अब अगर बात कर ले मैं जामुन की, अब ये साथियों ये फल को स्वाद और लाभ लेवे के लाने कछु समय तक आप सबको इंतजार करने हुज्जे करने पर है भैया, रोका जो आओ नहीं है। इन्हें पाओ जावे वालों जो जामुलिन नामक को

गोबो ब्लड में ग्लूकोज को कम करवे में बहुत ही मदद करत है। यही से हर कोनों को इको सेवन करें जज्जे। मधुमेह रोगियन के लाने तो जो औषधि की तरह काम करत है वो तो बेबी इको खा सकत हैंगे। अब साथियों कछु और बात हम आपको बता देवे कि मधुमेह रोगी जो है वे समझदारी के संगे हर फल को ले सकते हैं, खा सकते हैं। जैसे अगर स्वाद की बात करें तो आम धारणा हैगी कि मधुमेह रोगियों को फल नहीं खाने दे चज्जी, लेकिन मधुमेह रोगी जो है वे सब फल को सेवन कर सकते हैं। जो सही बात हैगी, हर एक फल में अलग प्राकृतिक मिठास होते हैगी। ऐसे सुगर लेवल जो है वो गड़बड़ा सकते है। वो इको आसान तरीका जो है वो के ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड को ध्यान में रख दे पैमाने से, और जो स्पष्ट हो जाऊ थे कि कार्बोहाइड्रेट से युक्त कोनो भी खाद्य पदार्थ खावे के बाद कौन सी गति से जो है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा सकत हैंगे। जो मानक 0 से लेकर 100 तक है वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 से 70, ऐसे खाद्य पदार्थ जो ब्लड में ग्लूकोज को तेजी से बढ़ाऊ थेंगे और शुगर लेवल के आकस्मिक उतार चढ़ाव को कारण भी बना थेंगे। मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो 69 से 56 होते हैं, ऐसे खाद्य पदार्थ जो मध्यम गति से ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाऊ थेंगे। तो साथी यारो कैबी को मतलब जो है वो कि अगर अपने शुगर वाले साथी भैया हैंगे और वे फलन को सेवन करवो चाह रहे हैंगे, तो देखो वैसे तो सब फल जो हैंगे वे सही हैंगे, लेकिन हम आपसे जो कहवो चाहते हैं कि एक बार आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लेवे कि हम ऐसे फल खा सकत या नहीं खा सकत। देखो अपन तो डॉक्टर है नहीं है, और ना अपन अपने मन से कोनो भी दवाई ले सकत, ना अपन कोनो भी अपने मन से फल खा सकत हैंगे, क्योंकि अपनो इलाज जो है भी डॉक्टर कर रहेंगे। तो डॉक्टरन को कहेगो के भी सही तरीका से आपको बता सकते हैं कि आपकी सेहत के लाने आपको शुगर की समस्या हैगी तो उनके लाने कौन से फल आपको ज्यादा जरूरी हैंगे जो आपको खाए चज्जी। ठीक है, तो जातो हो गए साथी हरो सेहत के साथी हैंगे मौसम के फल। आगे हम आपको बता देंगे कि योग भी अपने लाने जरूरी है, वजन को नियंत्रण रखवो भी अपने लाने जरूरी होते वो। जैसे कि अगर बात करें कि अनियमित जीवन शैली और खान पान की गलत आदतन के चलत वह वयस्क ही नहीं बल्कि किशोर भी मोटापे को शिकार हो रहेंगे। साथियों योग के ई आसन को नियमित अभ्यास करके आप घटा सकते हैं कि वजन और शरीर की अतिरिक्त चर्बी और वजन को कम कर सकते हैं, उनको नियंत्रण में रख सकते हैं। तो आसन को जो नाम है वो धनुरासन है वो इको करवे से पूरे शरीर सक्रिय होते है वो। ऐसे वजन घटने के संगे अन्य शारीरिक जो समस्याएं होती हैंगी उनको भी जो दूर करत है वो। धनुरासन से स्थूलता दूर होते हैगी और शरीर को सही आकार मिलत है वो। इको करवे के लाने साथी यारो आपको उपाय करने है, क्योंकि बहुत सारे श्रोतान को हमारे जो नहीं है पदों के धनुरासन किसे कथेंगे तो हम आपको बता देवे, आप यह प्रक्रिया कर सकते हैं। साथी इको करवे के लाने पेट के बल आप लेट जावे और आपके जो पांव हैंगे उनको कछु दूरी पे और दो हाथन को सीधे रख लेवे। अब घुटनन को मोड़ के कमर के पास ले जावे और अपने तलवन को दो हाथन से पकड़ लेवे। इसके बाद सांस लेत भय छाती को जमीन से ऊपर उठावे और पांव को आगे की तरफ खींचवे। अब शरीर को संतुलित रखत भय सामने की ओर देखवे। लगभग आपको जो 15 से 20 सेकंड बाद सांस छोड़त भय पैर और छाती को धीरे धीरे जमीन की ओर ले आने है वो। और आपको बता दीजिए कि जो आसन तनक कठिन है वो, लेकिन आप धीरे धीरे इको नियमित रूप से अगर अभ्यास करो तो आप अच्छी तरह से इको कर सकते हैंगे। और अच्छी बात तो जाऊ कि कोई ऐसी व्यक्ति के सामने आप करवे जिको इन सब आसन के बारे में जानकारी हुए, जो कोई जानत हो, या फिर आप आसान से तरीका जो भी अपना सकते हैंगे कि कई सारे वीडियो भी आसन के डरे रहेंगे, योग के डरे रहेंगे, तो आप भी देख के ये आसन को आसानी से कर सकते हैंगे। इको करवे से कमर और पेट की नहीं बल्कि पूरे शरीर की चर्बी जो है आपकी घटन लगत है घटवो शुरू हो जाएगी। तो साथी भैया आज के कार्यक्रम में बस इतने ही, कह के अपन ने जान लो है वो सेहत के साथी हैंगे मौसम के फल और अपने वजन को संतुलित यानी के नियंत्रित रखने के लाने योग भी अपने लाने जरूरी है। ये सब बातें अपन ने जानी हैंगी। अब अपना समय भी हो रहे हो आज के कार्यक्रम अम्मा के

से जहाँ भी हो, तो जो कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बतावे। फोन के माध्यम से आप चिट्ठी पत्री भी हमें लिख सका थेंगे। तो उनके लाने अपनो पतो है वो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तेगेला के पास ओरछा। आप साथी हरो आपको बता देवे कि देखो घाम बहुत तेज पड़ रहा है भैया हरो, ध्यान रखो, अपनो रखो, अपने घर के बुजुर्गन को रखो, अपने घर के जो बाली बच्चा हैंगे उनको भी ध्यान रखने है को। ऐसे में पानी आप सबसे ज्यादा पियत रहे, पानी में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करवे। एकाएक से जब आप धूप से आउट हेंगे तो कूलर की हवा में या एसी की हवा में बिल्कुल ना जावे। जब काकेती तनक देर बाहर बैठ लेवे नॉर्मल सी हवा में, उसके बाद ही आप कूलर या काकेते एसी में जावे। और जो ही नियम आपको जब करने हैं को, जब आप एसी या कूलर से बाहर निकल रहेंगे, ठीक है, तो जैसे ही आप एसी में मान लो बैठे हैंगे बिलात देर से और आपको बाहर जाने हैं कछु काम से, तो आप क्या करो कि तनक देर पहले नॉर्मल जैसी जगह पे बैठ जावे जी, तो कूलर पंखा ना चल रहा होगा तो उते बैठ जावे, उसके बाद आप बाहर निकलवे। बाहर निकलने के बाद आपको क्या करने हैं कि आपको सर को हमेशा ढक के रखने है गो, आंखन पे चश्मा लगाने है गो, और हो सके तो हाथन में ग्लेव्स भी पहन लेवे। अगर हमारा भैया गाड़ी से कितु जा रहा है, मोटरसाइकिल से, तो हर भैया आपको जो है तौलिया या गमछा को इस्तेमाल तो करने ही है गो, ढाक भी के लाने मुड़ी, संगे में हेलमेट भी आपको लगा के जाने है गो। ठीक है, आज के कार्यक्रम में बस इतनी गई, फिर मुलाकात हो जाए आपसे अगले कार्यक्रम में। आप अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को देव जाबी की अनुमति, हमारी और आपकी अगले कार्यक्रम में फिर से मुलाकात हुई एक नए विषय के संगे। तब तक के लाने नमस्कार।

0: किसान साथियों नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90 समाचार सुनेंगे बारे हमारे सब श्रोता साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत कर रहे थे कार्यक्रम खेत खलिहान में और हम हेंगे आपके संगे आपके रेडियो दोस्त वर्षा। साथियों आप तो जानते हेंगे कि खेत खलिहान कार्यक्रम हमारे किसान साथियों के लाने बहुत ही उमदा कार्यक्रम मानो जाऊते को कई के इमें अपन और जो बातचीत कर रहे थे वो अपनी खेती किसानी से जुड़ी हुई बातचीत होतेगी। चाहे फसल को कैसे लगाने हैं उनकी बात कर गए, फसल में कौन सी कीट व्याधियों को भगावे के लाने का तरीका अपनाना चाहिए वो बता देंगे, बुआई के तरीका का हो देंगे, तमाम तरह की किसानी से जुड़ी हुई जो भी चर्चाएं होती वे अपन और खेत खलिहान कार्यक्रम में समय समय पे करत रहेंगे। तो ऐसे ही अपनो खेत खलिहान कार्यक्रम सुन के अपने एक साथी हेंगी नंदिनी अहिरवाल जी जो कि सकरार से हेंगी, जाउन सकरार आपने नाम सुनी हुई है। तो जाउन सकरार से नंदिनी जी ने कार्यक्रम को सुन के अपनो सवाल भी हमसे पूछने की कोशिश करी हैगी और उनको कहबो हैगो कि आपके कार्यक्रम में जो एक्सपर्ट आउट हेंगे उन्हीं से हमें जा बात जानने हैगी। तो आज हम अपने कार्यक्रम में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से डॉक्टर सोलंकी सर जी को फोन पे जोड़ रहे हेंगे और नंदिनी जी को जो सवाल है वो कि उनकी कटहल जो पुरानी कटहल को पेड़ लगो है तो उसमें पीली पड़ रही बार सूख रही हैगी और ये बार फल नहीं लग रहा है। नंदिनी जी के अनुसार उमें फल हमेशा लगाते और बहुत बढ़िया फल लगाते, तो ऐसी अचानक से जो दिक्कत उन्हें आ गई हैगी उनके कटहल के पेड़ में बा परेशानी को समाधान दे ई कार्यक्रम से जानबो चाहती हैंगी। तो हम अपने कार्यक्रम में डॉक्टर सर को बहुत बहुत स्वागत कर रहे थेंगे। सर नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: कैसे हैं सर?
1: इस बुंदेलखंड रेडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से हूँ और पिछले करीब 15-16 वर्ष से हम बुंदेलखंड रेडियो से जुड़े हुए हैं। किसानों से प्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष रूप से उनकी समस्याओं का समाधान भी करने का प्रयास करते रहे और मैं नंदिनी को धन्यवाद दूं कि उन्होंने बुंदेलखंड रेडियो के माध्यम से अपने खेती किसानी में उगाए जाने वाले फल पौधों के विषय में चर्चा करने का प्रयास किया और उसमें जो समस्याएं आई उसके विषय में भी बताया। और कहा गया कि कटहल जो काफी लंबे अरसे से फल दे रहा है उनका
0: जी।
1: लेकिन पता नहीं किन कारणों से इस वर्ष उसने फल नहीं दिए, पीला भी पड़ रहा है और कमजोर भी है
0: जी।
1: तो मेरा नंदिनी को और नंदिनी के सहित हमारे जितने भी किसान भाई हैं जो फल पौधों के उगाने में अपने अभिरुचि रखते हैं उनको मेरा आग्रह है कि जो भी फल वाले पौधे हैं निश्चित रूप से पोषक तत्वों की आवश्यकता हर फसल को, हर पौधे को, हर जीव को होती है। इसमें लंबे समय से हम अगर उनको पोषक तत्वों का आपूर्ति नहीं करेंगे तो वो फल वृक्ष भी कमजोर हो जाता है और साथ साथ उसमें फलों का आगम भी कम होता है और फल फूल आ भी जाते हैं तो ड्रॉप कर जाते हैं। तो इसमें हमारे निरंतर हो जा रही कमियों को देखते हुए जो पोषक तत्व हैं या जो सूक्ष्म तत्व हैं

0: उनकी निरंतर कमी हो रही है हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में। इसके लिए मेरे किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि जितनी परिधि में उनकी छांव होती है, फल पौधे की जितनी परिधि में छांव होती है, यानी उस तने से लगभग 8-10 फीट दूर जो उसका तना है, उसके 8-10 फीट दूर में एक 1.5 फीट गहरी गड्ढा खोदो, 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का एक चैनल बना दो, नाली बना दीजिए चारों तरफ
1: जी,
0: ठीक है, और बिल्कुल जड़ में नहीं बनाना है
1: जी।
0: जड़ से 10 फीट दूरी पर एक घेरा बना दीजिए और उसका 1.5 फीट चौड़ा और 1.5 फीट गहरा उसमें गड्ढा खोद दीजिएगा और उसमें जिंक सल्फेट और बोरोन, ये बाजार में बोरेक्स के रूप में मिलता है और जिंक सल्फेट के रूप में मिलता है
1: जी।
0: और उसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और उसी में DAP और यूरिया और म्यूरेट ऑफ पोटाश और महुआ की और नीम की खली, ये पूरा मिक्सचर बना दीजिएगा। तो मिक्सचर बना करके उस गोबर की खाद में मिला करके उसमें डाल दें, उसकी जो मिट्टी निकाली है उस मिट्टी को हटा करके दूसरी मिट्टी फिलअप कर दें, उस मिट्टी में ये पूरा मटेरियल मिला करके उसको दे दें, दबा दें उस नाली में और उससे ऊपर पानी लगा दें
1: जी।
0: ये हमको करना चाहिए था फरवरी से पहले, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी आप कर देंगी और या हमारे किसान भाई जितने भी हमारे फल वाले पौधे हैं जो लंबी अवधि तक फल देते हैं उनमें पोषक तत्वों की कमी हो जाना प्राय देखा गया है
1: जी।
0: उनको ये प्रैक्टिस करना आवश्यक है और उसी में निरंतर फिर पानी भर दें उस नाली में मिट्टी का जो है जो मैंने पोषक तत्व बताए वो
1: जी।
0: प्लस भराई करके पानी भर दें तो वो फल देने लगेगा, उसमें फलों की तादाद भी बढ़ जाएगी, जो पीलापन है वो भी दूर हो जाएगा।
1: बिल्कुल, तो सर इको उन्हें रिजल्ट जी की हम बात कर रहे थे कि उनको रिजल्ट देख भी के लाने उन्हें कब तक मिल पे है वो, काहे कि अपन उन्हें जो सोचते हैं ना कि जैसे ही हमने काम करो तुरंत ही को रिजल्ट हमें देख भी मिल जावे, तो कितने दिन तक उन्हें इंतजार करने पड़े तब जाकर वो पेड़ अपनी पहले जैसी अवस्था में आ पे।
0: देखिए वो जब उसमें ये काम करेंगी तो मैं समझता हूँ 1 वीक में, 1.5 से 1 से 2 वीक में उसमें हरियाली आ जाएगी, है ना, पीला को दूर होने लगेगा और भी जल्दी करना है तो उसमें जो लिक्विड DAP आ रही है मार्केट में और जिंक और बोरोन का सॉल्यूशन 0.2% का, या जब भी वो दवा लेने जाए तो किसान भाई जब हमारे दवा लेने जाते हैं किसी दवा विक्रेता के यहाँ से तो वहां से वो एक डोज की नियत मात्रा बताते हैं, हर डोज की मात्रा का गणना वो दवा के अनुसार की जाती है, इसलिए मेरा यहाँ बताना मुश्किल है कि वो कितने परसेंट की दवा है।
1: बिल्कुल,
0: तो जितने परसेंट की दवा होगी उसका उतने परसेंट का सॉल्यूशन बना करके हम किसान भाइयों को ये आगाह करते हैं कि उसका फॉलियर स्प्रे कर दें तो उसका जल्दी परिणाम आएगा।
1: बिल्कुल जी,
0: तो वो जो भी उनके पास सुविधाएं उपलब्ध है, अगर स्प्रे कर सकते हैं तो स्प्रे करें और स्प्रे नहीं कर सकते हैं तो तने के आसपास चैनल नाली खोद दें और उसमें ये खुराक भरवा दें, भराई करवा दें।
1: बिल्कुल सर, तो बात तो बात हो गई सर अपनी कटहल की कि कटहल को अपन कैसे जीवित रखने हैं वो। दूसरी बात करें सर, अपन देख रहे हैं कछु दिनों से बहुत ज्यादा अपने बुंदेलखंड में अक्सर देखो जा रहा है कि शाम के समय आंधी तूफान जैसा माहौल बन जाते हैं वो, तो ऐसे में अपनी जो कद्दू वर्गीय फसलें हैंगी उनको बचावे के लाने का तरीका अपने किसान साथी अपना सकते हैंगे।
0: देखिए इसके लिए तो अब एकाएक तो रोकना असंभव है क्योंकि ये प्राकृतिक आपदाएं हैं और इसके लिए तो हमको बाढ़ विधि ही सबसे सर्वोत्तम मानी गई है। तो पश्चिमी और उत्तर दिशा में हमारे किसान भाई बाढ़ लगाए और बाढ़ से जो गर्म हवाएं आती हैं उनसे रुकावट होती है और कद्दू वर्गीय फसलों में जो पछुआ हवाएं जो इस समय आजकल चल रही हैं और गर्मी भी उत्तर दिशा से और पश्चिम दिशा से यहाँ से ही गर्म हवाएं आती हैं, इनसे रोकने के लिए हम लोग बाढ़ विधि का प्रयोग करें और उस बाढ़ विधि में या तो बायो बाढ़ विधि लगा दें जिसमें लंबे लंबे पेड़ पौधे पहले लगाए जाते रहे थे
1: जी।
0: या इतना जल्दी नहीं है तो किसी से भी उस बाढ़ उसकी हवा की गति को हम लोग कम करें जिसे अपना खेती किसानी

0: या जो कूड़ा करकट निकलता है उसको एक एक डेढ़ फीट ऊंचा तक कर दें, या जो है उसमें मेड़ बना दें थोड़ा ऊंची, और इसके साथ अगर नहीं है तो पानी चैनल लगा, चैनल खुदवा के, खाई खुदवा के उसमें पानी भर दें।
1: जी,
0: तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो ये प्लानिंग करने से पहले, अब तो किसानों ने लगा दिया कद्दू, कद्दू वर्गीय फसल आ रही है, तो उससे लगाने से पहले ही हमको ये प्लानिंग करनी पड़ती है, प्रबंधन करना पड़ता है कि बढ़ती हुई गर्मी से बचाव हम कैसे करें। तो हमारे किसान भाइयों से है कि जिस दशा से गर्म हवाएं आ रही है वहां चैनल लगा दें, चैनल में पानी भर दें तो उससे रुकावट हो जाएगी, और हवा को रोकने के लिए विंड ब्रेक का कोई भी संसाधनों से उसका रुकावट करें तो हवा की गति कम हो जाएगी, तो कद्दू वाली फसल बच जाएगी।
1: बिल्कुल सर, बहुत ही बहुत धन्यवाद आपको, आप हमेशा तत्पर रहेंगे अपने बुंदेलखंड के किसानन के लाने, और जब भी हम आपको फोन करें या आप प्रत्यक्ष रूप से आउट होंगे तो बिल्कुल हमारे किसानन के लाने एक उम्दा जानकारी दे के जाऊ थेंगे। बहुत ही बहुत धन्यवाद आपको हम कर वो जाऊ थेंगे सर।
0: चलिए, आपको पुनः सादर नमस्कार, सभी हमारे बुंदेलखंड रेडियो कार्यकर्ताओं।

एक बार साथी रो फिर से बहुत बहुत स्वागत कराते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान में। और बड़ी नौनी जानकारी हमारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सत्यवीर सिंह सोलंकी जी ने दी हैगी। और जब जानकारी चूंकि हमारे एक श्रोता साथी हैं नंदिनी जी, उनने एक सवाल करो तो उन सवाल को जवाब के लाने हमने विषय विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर सत्यवीर सिंह सोलंकी जी से बातचीत करी। और बातचीत कर रही थी हमारी वर्षा जी, तो जो जानकारी पाके शायद नंदिनी जी के मन में जो सवाल हते और चल रहे थे वे सवाल उनको शायद जवाब मिल गया होइए। हम कोशिश करत हैंगे कि जो भी हमारे श्रोता साथी जा खेत कल्याण कार्यक्रम को सुनत हैंगे और सुनके बहुत सारे किसान साथी तो हमें फोन करके पूछ लेते हैंगे कि हमारे फसल में जा परेशानी है या आगे चल के कौन तरीके की फसल हमें करें चाहिए। तमाम प्रकार के सवाल जवाब हो जाते हैं और हम कोशिश करा देंगे कि उन सवालों के जो आपके मन में चला थे उनके जवाब विषय विशेषज्ञ द्वारा आपको उपलब्ध हो जाए, तो हम पूरी कोशिश करा देंगे। तो आपको क्या करना है कि आप हमारे नंबर 9219207749 पर फोन के माध्यम से या व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। अगर आपको बहुत सारे हमारे किसान साथी हैं उनको कभी कभी तो डर लगा था कि हम रेडियो पर कॉल का करेंगे और कैसे बातचीत करेंगे, तो चूंकि आपको बताना चाहते हैं कि रेडियो बुंदेलखंड जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन है और जो समुदाय के लाने बनाओ गए है वो समुदाय की समस्याएं, समुदाय की जानकारी, तमाम प्रकार की बातें हम कार्यक्रम के माध्यम से करते हैंगे। तो आप ही को जो मंच है वो तो आपको उपयोग करें। हम अब कोशिश करें कि आने वाले समय में आपको जो जानकारी यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा सके। कैसे बहुत सारे हमारे किसान साथी, युवा किसान साथी जो रहेंगे

0: वे यूट्यूब पर जानकारी को सुनवा चाहते हैंगे, तो हम कोशिश कर रहे हैंगे, हम प्रयास कर रहे हैंगे कि यह जानकारी रेडियो के संगे संगे अपने जो माध्यम इंटरनेट को माध्यम है, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, इनके माध्यम से आप लोगों तक पहुँचावे की हम कोशिश करें। छोटे छोटे टुकड़न में जरूर करेंगे, छोटा सा प्रयास करें हम, जो बिल्कुल बाधा नहीं कर रहे कि आपको जल्द जाकर हम शुरुआत जल्दी कर देंगे, लेकिन हाँ आने वाले समय में हम जरूर जाके लाने प्रयास करेंगे। हम मैनेजमेंट जो हमारी कमेटी है उनसे बातचीत करके कोशिश करें कि ये कार्यक्रम को हम लोग लाइव या फिर हम लोग यूट्यूब के माध्यम से ये कार्यक्रम को आप तक पहुँचाएं। तो हमें आशा है कि हमारे श्रोता साथी समझे गए होंगे। अब एक बात आती है कि हमारे बहुत सारे श्रोता साथी, हमारे वर्षा जी फेसबुक पर जो मौसम की जानकारी पहुंचाते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से पहुंचाते हैं आप लोगों तक, तो मौसम की जानकारी जरूरी है। कैसे हमारे बहुत सारे श्रोता साथी ऐसे हैंगे उनको जानकारी बहुत अच्छी लगत हैगी, उनके लाने मौसम की जानकारी है। और एक बार फिर से पुनः आपसे निवेदन करते हैंगे कि जो भी हमारे श्रोता साथी हमसे जुड़न चाहते हैंगे, तो 9920707949 नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और चूंकि इंटरनेट के माध्यम से हमारे और कहीं भी हमारे श्रोता साथी इस ऐप के माध्यम से, रेडियो बुंदेलखंड के ऐप के माध्यम से कार्यक्रम को सुन सकते हैंगे, हमें खुशी हुई थी जब सोमवार को और बुधवार को हमारे फरमाइशी कार्यक्रम चलते हैंगे और इतने दूर दूर से हमें कॉल आते हैंगे, खासतौर पर महाराष्ट्र से हमारे किसान साथी जुड़े थेंगे, बड़ा अच्छा लगा था वो। तो हम प्रयास करें ये कार्यक्रम और सुगम और सरल बनाने की कोशिश करें, खासतौर पर यूट्यूब के या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से। तो पहले मौसम की जानकारी सुनो, जाके बाद अपन बातचीत कराते हैं। लेकिन जैसे पहले अपन संगे संगे गीत संगीत भी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, तो गीत संगीत सुनाते हैं, इसके बाद मौसम की जानकारी अपन सुनाते हैं।
1: जीवन भर सुख देती जा जैविक खेती।

की अपनी भूमि रे खुशहाली सुमाला। अरे माला माल कर देती जा जैविक खेती, जीवन भर सुख देती जा जैविक खेती। फसल उपज खो खूब बढ़ावे, फसल उपज खो खूब बढ़ावे, पर्यावरण को शुद्ध बनावे, पर्यावरण को शुद्ध बनावे। सुलावई अरे लावई, हाँ लावई लाभ हमें देती जा जैविक खेती, जीवन भर सुख।

खुशहाल बनो रे अपनो देश, खुशहाल बनो रे अपनो देश। सोतरो सोतरो आतरो सब जे बिक।

किसान साथियों नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.5 समाचार सुनने के बारे हमारे सब किसान साथियों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान में। और श्रोता भैया हम लेके हाजिर हो गए हैं आप सबके लाने मौसम आधारित जानकारी को। तो जो मौसम आधारित जानकारी जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं वह है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ के माध्यम से। और जो जानकारी कौन कौन से क्षेत्र के लाने हैं ये बात हम आपको बताए दे रहे हैं। बुंदेलखंड कृषि जलवायु क्षेत्र जिन्हें टीकमगढ़ छतरपुर दतिया और निवाड़ी जिला शामिल है वो। साथ ही आगामी 5 दिनों को मौसम को पूर्वानुमान इस प्रकार से है वो। मौसम विज्ञान विभाग के भोपाल केंद्र से प्राप्त भी जो मौसम के पूर्वानुमान अनुसार जानकारी बुंदेलखंड कृषि जलवायु क्षेत्र के लाने हैगी। और इनमें बताया गया है वो कि शाम के समय गरज चमक के संग ओलावृष्टि आंधी तूफान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। आमतौर पर शुष्क मौसम रह सकते है वो। अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तथा रात को न्यूनतम तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 3 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में ओलावृष्टि और गरज चमक के संग वर्षा तथा तेज हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चले हैगी। सूची में खड़ी फसल को गंभीर नुकसान भी हो सकत है वो। किसान साथियों को सलाह दी जा रही है कि वे पकी भई जो फल है सब्जियां हैं उनकी कटाई को कार्य शीघ्र से कर ले। साथ ही में कमजोर फसलों को सहारे भी दे देवे। अब बात करते हैं श्रोताओं मौसम आधारित साप्ताहिक कृषि परामर्श की। मूंग में रस चूसक कीट को प्रकोप देखो जा रहे हो। अतः किसान भाई फसल को निरीक्षण कर दे तथा पाए जावे पर बचाव हेतु इमिडाकोप्रिट दवा की 0.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर लेवे। जिन किसान भाइयों ने खाली खेतों की जुताई नहीं करी है वे विगत सप्ताह में भई बारिश से प्राप्त नमी को लाभ लेते भय जुताई को काम कर लेवे। अब बात करे थे ये फल फूल और सब्जियों के बारे में। किसान भैया टमाटर मिर्च तथा बैगन की फसल में चुर्रा मुर्रा यानी लीफ कर्ल रोग को प्रकोप देखो जा रहा है वो। इसे बचाव हेतु किसान साथी कोनालफास 25 ईसी दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर ले गए तथा अभी बारे 7 दिनों तक सब्जी को बिल्कुल ना तोड़ गए। श्रोता साथियों ओलावृष्टि गरज चमक के संग वर्षा तथा आंधी तूफान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना को देखते हुए किसान भाई पान के लगे भय बरेचा की मरम्मत को कार्य कर ले गए। भिंडी की फसल में लाल कीड़ा को प्रकोप हो सकत है वो। अतः किसान भाई फसल को निरीक्षण कर दे और अगर कीड़ा पाया जा रहा है वो तो उनके बचाव हेतु ट्राइजोफास 40 ईसी दवा की 2 मिलीलीटर पानी में घोल बना के आसमान साफ होने पर छिड़काव कर ले गए। कद्दू वर्गीय सब्जी जैसे कि कद्दू लौकी टिंडा करेला तरबूज एवं खरबूज इत्यादि में लाल कीड़ा एवं फल मक्खी को प्रकोप तापमान बढ़ने से दिखाई दे सकते है वो। अतः इसे बचने के लाने अपने किसान भाई ट्राइजोफास 40 ईसी दवा की 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर आसमान साफ होने पर छिड़काव कर ले दे। किसान भाई नए बाग लगावे हेतु स्थान को चुनाव कर दे साथ ही में खुदाई को कार्य भी शुरू कर दे। नींबू वर्गीय पुराने पौधा के तने पर चूना में प्लाईटाक्स मिला के लेप कर ले ताकि धूप से तना की क्षति ना हो। अब बात करते हैं ये साथियों अपने पशुओं की। पशु बकरियां और मुर्गियों की मानसून पूर्व पशुओं को गलघोटू व जहरी बुखार के टीका जरूर लगवा ले ताकि बारिश के मौसम के आगे तक इनमें अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकास हो पाए। अभी हमारे दिनों में ओलावृष्टि गरज चमक के संग वर्षा तथा आंधी तूफान को देखते हुए कच्ची छत बारे पशुशालाएं के गिरवे को डर बने रहते हुए सो इसे बचने के लाने कच्ची पशुशालाएं की मरम्मत को कार्य भी जल्दी से जल्दी कर ले ताकि कच्ची छत वाले पशुशाला में पशु सुरक्षित रह पावे। तो साथियों जो जानकारी हम आपको दे रहे थे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ के माध्यम से जो जानकारी आपको रेडियो बुंदेलखंड पर बताई जा रही है। आज की यह जानकारी इतने की अगली जानकारी हम आप तक फिर से लेके आए हैं। आप ऐसे सुनते रहो रेडियो।

में इस तरीके का मौसम परिवर्तन, कहीं कहीं तो जब मौसम इतना करवट ले जाता है कि कहीं कहीं पानी बूंदाबांदी हो जाता है, कदम कदम तो ओले पड़ जाते हैं, कि तो मौसम करवट जब ले थेगा तो तमाम प्रकार की समस्याएं खेती में भी आते हैं। तो हमें खास तौर पे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो, यानी जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है वो, उनको बचावे के लाने हमें अथक प्रयास करने हैं। कैसे बच सकत, आप सभी श्रोता साथी भली भांति जाखों जानत भी हैंगे, या कैसे अपनों पर्यावरण को अपन लोग बचा सकत हैंगे। खास तौर पर हमें कोशिश करने के, हमें जैविक पद्धति की ओर जावो बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे आने वाले समय में हम जैविक पद्धति को अपनावे की कोशिश करें, स्वदेशी अपनाएं। हमारे कई ऐसे किसान हैं जो अपनी खेती में जैविक पद्धति से अपना खेती को करण लगे हैंगे, और आधुनिक खेती करबो, प्राकृतिक खेती करबो, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, चैलेंज वाला विषय भी है। वैज्ञानिक पद्धति से खेती अगर हमारे किसान साथी करत हैंगे तो बहुत ज़्यादा उनको फायदा भी होते है। अगर जमुनिया की बात करें, और हमारे कुनुआ में भी कुछ किसान महिलाएं हैं जिन्होंने जैविक खेती करबो स्टार्ट करो है वो, ऐसे उदाहरण हम दे सकते हैं कि हमारे किसान साथी अब बदलते समय में अपनी खेती भी बदल रहेंगे। तो हमें जब बदलाव के आगे चलने हैं, वो बदलने हैं अपनी खेती की, जब पुरानी पद्धतियों को, नई चीज़ों को, नई तकनीकी से अपन को खेती करने हैं वो, तो समय समय पर हम हर बार अपने किसान साथी के लाने तमाम प्रकार के ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी लेके आते हैंगे। तो हमें आशा है कि जब जानकारी पाके हमारे किसान साथी जरूर अपने खेती में जरूर बदलाव करें। तो अब वक्त हो चुका है जो कार्यक्रम खेत खलियान कार्यक्रम से जावे को, तो कैसे लगो जो कार्यक्रम हमें जरूर बताओ। हमारे जा नंबर पे, नंबर है 92 19 20 77 49, या फिर चिट्ठी के माध्यम से आप चिट्ठी पत्रिका भेजना चाहते हैं तो पत्रिका को पत्र है 9 रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तेगेला के पास ओरछा। तो अब हमें देव जावे की इजाजत, आपकी हमारी फिर हुई है अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लाने नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इबेरा अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। दोस्तों कार्यक्रम को जैसो नाम है तैसो काम भी है। इस कार्यक्रम में अपन एक विधा सुनते हैं और विधा को आनंद लेते हैं। सो आज सुने अपन इस कार्यक्रम में विधा तमुरा, और तमुरा भजन को अपन आनंद ले हैं। और इस तमुरा भजन को गा रहे हैं कोमल दास जी। सो कोमल दास जी के स्वर में अपन सुने आज ही कार्यक्रम में जे तमुरा भजन को। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। आओ सुनते हैं कोमल दास जी के स्वर में ई तमुरा भजन को।

बिल्कुल दोस्तों, सुमरो बारंबार जी। देखो कितना बढ़िया जो तमुरा भजन अपन ने सुनो है, तमुरा भजन को आनंद लाओ है। और ये भजन को गा रहे थे कोमल दास जी और उनके संगी साथी। अब दोस्तों आओ एक क्रम में कोमल दास जी के स्वर में फिर से सुनते हैं एक और बढ़िया से तमुरा भजन को, लेते हैं तमुरा भजन को आनंद। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में।

बिल्कुल, चलने परे जरूर हरी। देखो कितना बढ़िया जो गीत अपन ने सुनो है, तमुरा भजन को आनंद लो है, ये गीत को गा रहे थे कोमल दास जी। अब कोमल दास जी के स्वर में अपन आगे एक और गीत सुने और गीत को आनंद ले। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे, अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में सुनत रहो जो कार्यक्रम विधा बुंदेली।

के बाबा बारे के बैरागी। देखो कितना बढ़िया जो अपन ने तमुरा गीत सुनो है, गीत को आनंद लो है। आओ ये गीत के संगे संगे अपन एक और आगे गीत सुनते हैं, गीत को आनंद लेते हैं। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन भैया के संग में, सुनत रहो जो अपनो प्यारा सो कार्यक्रम बेधा बुंदेली अपने दोस्त माता दीन भैया के संग में। आओ सुनते हैं कोमल दास जी के स्वर में आगे एक और तमुरा गीत खो।

बिल्कुल निर्गुण खेत उजारे जतन बिन निर्गुण खेत उजारे। देखो कितना बढ़िया जो तमुआ गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रहे थे भैया कोमल दास जी। अब दोस्तों कोमल दास जी के गीत के संगे संगे हम आप और इनको बता दें कि आज के अपने कार्यक्रम विधा बुंदेली को इतनी समापन होबे को समय हो रहा है। सो अपने दोस्त माता दिन भैया को तो दो ही कार्यक्रम से जाबे की अनुमति, और चलत चलत अपन लिख लो हमारा फोन नंबर और हमारे पते को जिसे के आप और हमारे फोन नंबर पे हमें कार्यक्रम की राय सुझाव दे सकें, पहुंचा सकें हम तक फोन के माध्यम से। और पते पे अगर आप चिट्ठी पत्री लिखबो चाहें तो हमें चिट्ठी पत्री भी लिख सकत। सो हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। एक संग हमारा फोन नंबर है 92-19-20-77-49। सो जो नंबर लगा के आप कार्यक्रम के राय सुझाव भी दे सकत के माता दिन भैया हमें आपको कार्यक्रम जो कैसो लगो। सो अब एक संगे संगे देखो अपनो समय भी हो रहा काय के घड़ी इंतजार अपनो निकट अपन खो समय को इंतजार करने आउत। सो घड़ी अपन से कह रही के माता दिन भैया अब आपको ई कार्यक्रम से जाबे को समय भी हो चलो है। सो दोस्तों हमें दो ई कार्यक्रम से जाबे की अनुमति और अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात ई कार्यक्रम में ए बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार।

बंद बहने आए आज वो सब।

0: आज हमारा आया सर पे आज हमारा आया
1: होगी महिला पंतूर सरपंच सब सरकार हमारा आया
0: होगी महिला पंच और सरपंच सब सरकार हमारा आया
1: अब तो राज हमारा आया सर पे ताज हमारा आया होगी महिला पंच और सरपंच सब सरकार हमारा आया
0: होगी महिला पंच और सरपंच सब सरकार हमारा

0: आया।
1: एक सिपाही नहीं है भैया, 1000 हमारा आया।
0: अब तो राज हमारा आया, सर पे ताज हमारा आया। वो भी महिला पंच और सरपंच, सब सरकार हमारा आया।
1: वो भी महिला पंच और सरपंच, सब सरकार हमारा आया।
0: अब तो

0: बाहर से आना पानी नहीं है रोजी बिजली पानी।
1: हमने वोट की कीमत जानी तो बाजार हमारा आया।
0: हमने वोट की कीमत जानी तो बाजार हमारा आया। अब तो राज हमारा आया, सर पे ताज हमारा आया। होगी महिला पंच और सरपंच सब सरकार हमारा आया।
1: होगी महिला पंच और सरपंच सब सरकार हमारा आया। होगी महिला पंच और सरपंच।

जाइयो तो धन जाइयो नहीं कर हो वंदन भी ले लियो जा लाचारी अब ना जाइयो जा लाचारी अब ना जाइयो तो मानो सब समान तो मानो सब बिधिया कैसे हो पराई बिधिया कैसे

पर्यावरण शुद्ध जो बना लो के हरे भरे तिरछा लगा लो, पर्यावरण शुद्ध जो बना लो के हरे भरे

हम खर्चा में 20,000 कार की कह दई गो मोड़ा के फलदान में हम खर्चा में 20,000

केवल भक्ति की हम ना माने। सुन लो हम का जाने डबल बेड की हम ना माने। डल्लब दे दो गद्दा जाने रुपया 20,000 कोड़ी कोड़ी हम ना करें उदारी।

ढंग की कई जो तुम पे ठारी सात बन की बने मिठाई ढंग की कई जो तुम पे ठारी सात बन की बने मिठाई तो ढंग की कई जो तुम पे ठारी सात बन की बने मिठाई जी मैं सबको करे बड़ाई सुन सुन लो।

जज वह फूलर चाने तो नए आई तुम हम कहा चाने टीवी पर जो है फूलर चाने पढ़ी लिखी हमें मोरी चाने शिक्षित हो पाए शिक्षित हो पाए।

बंधु इतनो वरदान दो मांगत है दीन बंधु ऐसे दुष्टन के घर पिटिया भगवान दो ऐसे दुष्टन के घर पिटिया भगवान दो ऐसे दुष्टन के घर

0: बदलती जलवायु के लिए तैयार हो।
1: कार्यक्रम शुभकल सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त वर्षा
2: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष। साथियों, कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसका नाम है शुभकल कार्यक्रम।
1: यह कार्यक्रम रेडियो बुंदेलखंड और लोरियल फाउंडेशन के सहयोग से रेडियो बुंदेलखंड पर प्रसारित किया जा रहा है
2: और ये श्रृंखला का 11वां कार्यक्रम आप लोगों के बीच हम लोग लेकर आए हैं। साथियों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत को कम होती ही है, इससे साथ ही कृषक भाइयों को आय अधिक प्राप्त होती है तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की इस स्पर्धा में जैविक उत्पादन अधिक खरे उतरते हैं, जिसके फलस्वरूप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा कृषक भाई अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथी कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे से होंगे। और साथियों, पिछले कार्यक्रम में हमने जाना था कि क्या कारण है कि लोग जैविक खेती क्यों नहीं करते हैं, वो आंकड़ों पर हमने एक नजर डाली थी। साथ साथ में हमने समुदाय से बात की थी और विषय विशेषज्ञ द्वारा हमने जाना था कि लोग जैविक खेती करने में क्यों हिचकिचाते हैं। बहुत सारी बातें निकल के आई थी और आज के हमारे इस कार्यक्रम में आज बात करने जा रहे हैं कि जैविक खेती करने से हमें क्या लाभ है।
1: हमारे इन कार्यक्रमों के बनाने का उद्देश्य भी यही है, कैसे हमारे किसानों की दिशा और दशा में सुधार हो सके। इसके लिए हमारे किसान साथियों जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है, खासतौर पर महिला किसान।
2: वर्षा, हमारे किसानों की दिशा और दशा तभी सुधरेगी जब हमारे किसान साथी जागरूक होंगे और जागरूक तभी होंगे जब उनके पास उस विषय की अच्छी तरह से जानकारी हो और जानकारी तभी होगी जब रेडियो बुंदेलखंड पर इन कार्यक्रमों को सुनेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम भी उन किसान साथियों के लिए बना रहे हैं और खास तौर पर उन महिलाओं के लिए जो दिन रात अपने परिवार के साथ खेतों में मेहनत करती हैं।
1: अरे मनीष भैया, इनको समझाने के लिए हमारी बैरोभौजी ही काफी है, क्योंकि उन्होंने अपने लालाजू को भी समझाया। आइए चलते हैं बैरोभौजी के पास।

0: लालाजू, ओ लालाजू।
1: हाँ भाजी बता क्या बात है?
0: क्या बात है लालाजू, आप तो बड़े आराम से बोल रहे।
1: नहीं भाजी अब तो मैं आराम से बोलो सो भाई बात।
0: का कह रहे हैं कठिया के बोलो सो भाई बात।
1: अरे भाजी तनक हमने कही कि आज आराम से बतिया लेंगे भाजी से बेसी तो लड़त रहता अपन।
0: अरे लालाजू मैं जाके अभी आई थी कि मैं तुम मे संग में चलू।
1: तुम्हारे संग में चलू?
0: हाँ।
1: काहे की लाने?
0: मैं हारे चलू ने।
1: हारे चलो?
0: हाँ।
1: ऐसा कहे थे हारे कि हम हारे चले थे।
0: अरे लालाजी मैं कह रही तो समझ लो जरूरी काम है मुझे।
1: अरे भाजी अभी हम पढ़ रहे।
0: पढ़ रहे बात में पढ़े नहीं जो आखने मुझे जरूरी काम है वो हारे तुमसे मिल रहे हैं वो।
1: ऐसी क्या बात है बता नहीं बता दे तो।
0: कहा कह रहे लालाजू नहीं चल रहा है?
1: अरे जा कह रहा भाजी कि ऐसी क्या बात है इतनी बता रहे हारे जाने की क्या जरूरत है।
0: अरे लालाजू।

0: बाद में इसमें का डाल लूं ई खेतन में, मैं तो समझ में नहीं आ रही मैं जो दवाई ले आती होंगी, लेकिन इनसे का कोई मुंह का कुछ फायदा थोड़ी ना पड़ रहा है वो। और मैं सोच रही होंगी कि अगर तुम्हें कोई दवाई याद हो तो तुम बता दो।
1: भौजी देखो अब तुम हमसे तो ज्यादा जानते हो, काय भी लगी हमारा नाम के।
0: अरे लाला जी फिर भी मैंने कही तुम पढ़े लिखे होंगे तो मैं तुमसे पूछ लेती होंगी, तुम्हें कछु नहीं ना होगा।
1: अरे आओ तो है नहीं, लेकिन हमने खेती बाड़ी में थोड़ी जाना देते एक बात।
0: अच्छा मैं तुम्हारी, चलो मैं तुम्हारी खेती देखी, आप तुम्हारी कैसी है।
1: मैं देखे हम तो दवाई दे दी अपनी चल रही है आजकल दे
0: दवाई देते ही।
1: चलो देखे तो
0: चलो चलो तो पहले तुम्हारी खेती देखे आप है, फिर मैं अपनी देखो।
1: देख भौजी देख जा दीदी आसू की अपनी फसल, लेकिन मैं तो किसानी से हार ही गया, लेकिन पढ़ाई जानी है तो खेती करनी है, तो जिनमें देखो जो आजकल की दवाई चल रही है अपनी रासायनिक दवाई ये देखनी है तो जो दुकान से ले लेके
0: का कह रहे लाला जी मर भी जाने या तो जा खेती ऊपर से प्राण खा रही।
1: मर भी नहीं पड़े भी जाने आते ही
0: हाँ।
1: पड़े भी जाने तो खेती भी करनी है संग संग, देखो अब किसानी को गाँव वाले को काम है तो सब करनी है आते ही।
0: हाँ वो तो ये नहीं की लाला जी मैं जा कह रही कहा जा रहा दिन में देखो तुझे भटन में कैसे तीरा मीरा से लग रहा है वो, और का दुखन में आने से लग रहा है कहा जा रहा तुम।
1: अरे भौजी दवाई तो मैंने मुल्कन दी अपनी बाजार से लिया लिया गए।
0: लाला जी मैं तो जहाँ से आई थी देखन मैंने कही कि तुम्हारी अच्छी हो जो उमदा को लाला जी अच्छी दवाई डाल रही हो, मैं जी वहाँ ने लाला जी की फसल तो देखे कैसी का हैगी।
1: अरे भौजी क्या तो ऐसी बातें कर रही, तुम ये घर है बन नहीं दवाई, अब मैं तो बाजार से लिया तो था, तुम मैंने कहा करा था जो मैं तुम्हें देखे हूँ कैसी है तुम ज्यादा वो बता रही तो।
0: अरे चलो लाला जी तो तुम्हारी से तो अच्छी मिल जाएगी, ये तो जब की देसी दवाई में इनको इस्तेमाल करे थे, मैं तो बड़े वहां से आई थी। अरे मेरे लाला जी की अच्छी उमदा हो जाए का पढ़े लिखे है अच्छी दवाई ले आती हूँ।
1: अरे भौजी अब दुकान पे मिल जाता अपनी ये सब चीजें तो फिर काय में दिक्कत करो, जैसे बढ़िया दवाई मिला सिंगन में दवाई नहीं मिला दुकान पे मशीन से किंच दो
0: रासायनिक
1: फिर
0: बाकी तो
1: भाई तो लिया
0: इतनी अच्छी कही वो हर लगे ना फटकरी रंग चोको हो जाए।
1: भौजी क्या तो ऐसी बात कर रहे जैसे तो अपने घर ही बनाते हो दवाई।
0: हाँ उसमें तो बनाते ही हूँ मामे कहा सके वो
1: कहा घर है बना।
0: हाँ जो जैविक दवाई है वो तो मैं अपने घर बनाऊ तो और अपनी बैगन में वो चाइजों की फसल में अपनी उनमें डालत हूँ।
1: कैसी काय को मस्करी कर रही भौजी
0: कहा कह रहे लाला जी काय को मस्करी कर रही मस्करी दिखा रही
1: कई तरह के घर बना दवाई बना वो हासिल के लिए।
0: हाँ लाला जी मैं इनसे उमदा दवाई बनाते रासायनिक दवाई जिनसे मैं जैविक दवाई बहुत अच्छी बना लेती होंगी।
1: अब तो भौजी चला ही नहीं आए थे यार देखूं
2: कैसे देख लो मेरी फसल कैसी उमदा लहलहा रही
0: ना ये कीड़ा लगो कीड़ा के ना वो जाना बहुत हो तो मैं मुझे तो विशेषक बुला लेते हैं तो उनसे पूछा कि कैसी देसी दवाई कैसे बनाओ मैं जो अपनी चीजें है प्राकृतिक ईंधन से कैसे दवाई बनाओ।
1: अच्छा
0: हाँ
1: अब तो चला ही नहीं आए त्योहार
0: चलो देखो देखो लाला जी जो तो लगो मैं बैगन और जी अभी मैंने टमाटर की पौधे सुबह लगा दी
1: वो भौजी तेरी फसल तो सांसों देख भी ना थेगी।
0: कहा कह रहे भौजी तेरी फसल तो बड़ी उमदा है
1: और मेरी फसल से तो बहुत ही उमदा हैगी।
0: हाँ तो लाला जी मैं तो यही सोच रही थी कि तुम्हारी उमदा हो जे लेकिन मैं तो खुदा बड़ी खुश हो रही कि मेरी अच्छी हैगी मैं तो इतनी घरे बना था अपनी हिसाब।
1: लेकिन भौजी जी टपक जाएंगे मटका धरे जे का ही धरे चार पाँच।
0: कहा कह रहे लाला जी टपज्जा में लोटा धरे
1: लोटा नहीं भी मटका धरे बस तू टपज्जा में।
0: हाओ लाला जी मैं मटकन से मैं मटका खाद बना थो
1: मटका खाद
0: हाओ
1: बा कैसी बना
0: ले लाला जी तुम्हें जो ही पता नहीं है मैं अपनी सब देसी खाद डाल रहा था उनमें जिसे उनमें उर्वरक जो अपनी खेत की जो उर्वरक शक्ति है और नमी है वो हमेशा बनी रहते और पैदावार भी अच्छी हो थे।
1: और मैंने पढ़ा तो है ना तो किताबन में मटका खाद जी सब जो खादे बनी।
2: अच्छा
1: लेकिन मैंने जैसे सोची नहीं है कि खुद बना सका।
0: अरे वो तो है ही बना सका थे तो लाला जी अगली बार ध्यान करने कि दवाई घरे ही बनाने और घरे ही खाद बनाने उन्हीं को इस्तेमाल करने।
1: अब तो भौजी मैं तुम्हें जरूर सीख भी आऊँ जो दवाई बना
0: बिल्कुल तो आज जो ट्रेनिंग लेवे के लाने।

साथियों, सुना आपने बैरू भौजी को, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छी तरीके से जैविक खेती के बारे में बताया कि अगर हमारे खेतों में कोई भी समस्या होती है तो उसके निजात पाने के लिए हम रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल ना करके घर से बनी हुई जो खाद होती है, जो दवाई होती है, जो हम नेचुरल तरीके से बनाते हैं, उनको हम अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बेहतर पैदावार पैदा कर सकते हैं।

0: जी ने कितने अच्छे तरीके से जैविक खेती के बारे में बड़े अच्छे तरीके से समझाया और जो भी गिला शिकवा थे वो भी हमें दूर हुए। लेकिन हमें यहाँ पर रुकना नहीं है क्योंकि यहाँ तक बौरी भोजी तक सवाल सीमित नहीं है, यहाँ पर सवाल आते हैं हमारे किसान साथियों के, क्योंकि किसान साथी जैविक खेती इस बुंदेलखंड क्षेत्र में क्यों नहीं करते हैं, उनके पास आपको ले चलते हैं, उनसे जानते हैं। क्योंकि आजकल हम ये देख रहे हैं कि किसान अपने खेती की लागत इतनी ज्यादा लगाता है और उसके लिए कर्ज करता है, कर्ज होने के बाद साथ साथ में आज हम बैंकों की स्थिति देखते हैं तब पता चलता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो डिफॉल्टर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लागत भी नहीं निकलती है पूरे साल भर खेती करने के बाद। तो ये सारी पीड़ाओं को हम दूर करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, जैविक की ओर लोगों को ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। लेकिन अब सबसे पहले हम अपने किसान साथियों के पास आपको ले चलते हैं और जानते हैं कि जैविक खेती क्या है, लेकिन कुछ विराम के बाद।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी आरजे दोस्त आराधना और बात करेंगे आज जैविक खेती क्या है। ऐसी खेती जिसमें दीर्घकालीन व स्थिर उपज प्राप्त करने के लिए कारखानों में निर्मित रासायनिक और उर्वरकों, कीटनाशियों व खरपतवार नाशियों तथा वृद्धि नियंत्रक का प्रयोग न करते हुए जीवाश्म युक्त खादों का प्रयोग किया जाता है तथा मृदा एवं पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाता है, उसे जैविक खेती कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में।
2: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
3: ब्रजनंदन पाल कैना से।
0: ब्रजनंदन जी, आपने जैविक खेती के बारे में तो सुना होगा, तो जैविक खेती से लाभ क्या है?
3: जैविक खेती से लाभ यही है कि मतलब कुछ इनकम ज्यादा आती है, उसमें अपन को फायदा, जैसे मूंगफली है, मूंगफली उखाड़ी उसको थोड़ा बेचने के कंपनी, तो इसी के बारे में थोड़ी।
0: अच्छा, तो आपको कुल मिला के ज्यादा मतलब इसके बारे में जानकारी नहीं है। एक चीज और जानना चाह रहे हैं कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि जैविक खेती करके अपनी खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं?
3: नहीं कर सकते।
0: चलिए, और आय को हम बढ़ा सकते हैं?
3: आय देखो, महंगाई तो बढ़ रही है, जमीन के ऊपर है, ऐसे तो थोड़ी ना बढ़ेगी, कुछ अलग तरीके की खेती करें तभी तो आय बढ़ेगी।
0: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप अपना परिचय दीजिए।
3: सुरेंद्र पाल कहना।
0: अच्छा सुरेंद्र पाल जी, आप जैविक खेती के बारे में जानते होंगे, तो जैविक खेती से लाभ क्या है आपके हिसाब से, क्या लगता है लाभ क्या है?
3: हाल की स्थिति में तो जैसे मूंगफली हो गई, तिली हो गई, उड़द हो गए, चना हो, जैसे मूंगफली हो गई, तिली हो गई, सोयाबीन हो गया, उड़दा हो गया, मूंग हो गई,
0: जी जैविक खेती के उत्पादन।
3: हाँ हाँ, तो ये उत्पादन है, तो अगर इससे तो ये है, अगर मान लो 2-4 बीघा जमीन है किसी के पास, तो इस चीज से कोई लाभ नहीं है।
0: अच्छा, जैविक खेती करके हम अपनी खेती की लागत को कम कर सकते हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है?
3: अपने हिसाब से जो है कि जैसे वो अपने हाथ में तो है नहीं, अगर बरसात सही तरीके से अगर हो गई तो अपन लाभ ले सकते हैं। अगर बरसात नहीं हुई, किसी के कुएं में पानी नहीं है, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, मान लो हम या आप ही हो गए कि भगवान के भरोसे रहते, अगर अभी पानी खुल गया तो मूंगफली में कुछ नहीं है, अगर बरस गया तो सब।
0: एक वर्ष आखिरी सवाल है कि जैविक खेती करके हम अपनी आय को कैसे बढ़ा सकते हैं आपके हिसाब से, चूंकि आप खेती करते हैं?
3: खेती करके मान लो ऐसे ही बढ़ा सकते हैं कि अगर कुआ अंदर पानी है तो टाइम से बो दिया, टाइम से पानी दे दिया और टाइम से खाद बीज लगा दिए तो अच्छी फसल उपजाऊगी, तो अपन उससे लाभ ले सकते हैं।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा लारा राम जी आपसे बात करके, धन्यवाद।
4: हमारा नाम है रईस यादव, लुधौरा नवाड़ी विधानसभा से बोल रहे हैं।
0: अच्छा वही जी, हम जानना चाह रहे हैं कि जैविक खेती जो होती है उससे करने से क्या लाभ है?
4: उससे ये लाभ है कि सबसे जल्दी पौधा अपना होता है, जो पता है, टमाटर है, आलू है, जल्दी तैयार हो जाती है उससे। अच्छा, जो गोबर खाद सा है, गोबर खाद का मतलब जैविक खाद में थोड़ा मतलब बीमारी टाइप का तत्व रहता है, उसमें निर्दोखन रहता है, मतलब गोबर खाद।
0: अच्छा,
4: इससे आदमी बीमार कम पड़ते हैं।
0: अच्छा, आपको रही जी क्या लगता है कि जैविक खेती करके खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं आपके हिसाब से?
4: धीरे धीरे होगा, तो जैसे अपन को थोड़ी मात्रा में कम खाद दो, इस साल पर फसल हरेली कम दो, मतलब गोबर जो मान है गौ माता का, ये ज्यादा मात्रा में देते जाओ, इसके बाद जैविक खाद देना बंद हो जाता,

0: फसल उन्होंने रखी है सर।
1: अगर जैविक खेती करके अपनी आय को हम बढ़ा सकते हैं क्या, आपके हिसाब से क्या लगता है?
0: जैविक मान लग खाद से बढ़ती है वाला आय,
1: आय बढ़ती है। कैसे बढ़ती है?
0: ऐसे है कि जैविक खाद अच्छी जैसी मात्रा में हर गुड़ाई जो खाद छिड़ते हो अपन,
1: अच्छा
0: पानी देते रहो, बढ़िया फल फूल बढ़िया तुम्हारी चलेगी उसकी।
1: धन्यवाद भाई साहब।
2: ब्रजकिशोर कुशवाहा।
1: अच्छा ब्रजकिशोर, हम एक चीज जानना चाह रहे हैं, जो जैविक खेती होती है आपके हिसाब से उससे को करने से क्या लाभ है?
2: हमें पता नहीं है सर।
1: जानकारी नहीं है जैविक खेती की?
2: नहीं है जानकारी।
1: अच्छा जैविक खेती करके लागत को कम कर सकते हैं अपन लोग?
2: अब जी हमें पता नहीं है सर।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
4: साथियों अभी आपने सुना कुछ किसानों की बातचीत को, जिनकी बातों से बिल्कुल पता चल रहा था कि कुछ किसान साथी हमारे ऐसे हैं जिनको जैविक खेती के बारे में पता ही नहीं है कि आखिर जैविक खेती क्या होती है। लेकिन कुछ किसान साथी ऐसे हैं जिनको पता तो है कि जैविक खेती क्या होती है लेकिन करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जैविक को करने से हमारी फसल सही नहीं होगी या हमारी मार्केट में वैल्यू कम हो जाएगी। उनके अपने मन में जो भ्रांतियां चल रही थी, आइए इन्हीं सब बातों को लेकर हम आपको सीधा ले चलते हैं विषय विशेषज्ञ के पास, लेकिन एक गीत सुनने के बाद।
5: जीवन भर सुख

पर्यावरण को शुद्ध बनावे, पर्यावरण को शुद्ध बनावे, सुलावई अरे लावई हाँ लावई लावे हमें देती जा जीव के खेती जीवन भर सुख।

खुशहाल बनो रे अपनो देश, खुशहाल बनो रे अपनो देश। सो करो सो करो आ करो सब जैविक खेती, जा जैविक खेती।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में। और साथियों, आप अभी आपने कृषि से जुड़ा इस गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सीधा ले चलते हमारे विषय विशेषज्ञ के पास और जानते हैं जैविक खेती के उन सारे किसानों के जो सवाल थे, उन सवालों के जवाबों को।
1: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए, जीवन बचाओ।
0: का सर मानना क्या है कि किसानों को जैविक खेती, अगर अगर इस क्षेत्र में देखा जाए सर, मध्य प्रदेश में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर एक जैविक खेती

0: करना ही नहीं चाहते। जब हम किसानों से बात करी वो नहीं करना चाहते हैं, तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, एक बहुत वैसी बात हम आपको बता रहे हैं कि भारत ही नहीं पूरा विश्व आने वाले समय में जो खाद्यान्न संकट से गुजरने वाला है। 2050 तक पूरे विश्व की आबादी लगभग 10 अरब हो जाएगी, उसमें भारत की आबादी लगभग

0: कृषि पद्धति की बात है तो इसे तो अपनाना ही होगा, और इसके लिए उन्हें सहजता से उनके साथ संपर्क करके जो विशेषज्ञ लोग होंगे, कृषि विशेषज्ञ लोग होंगे, और उनसे मिलना होगा और उनको इसके जो फायदे हैं वो बताना होगा। तो जो अस्थायी कृषि है आपका, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, क्योंकि इसका इसके कई नाम से जानते हैं जाना जाता है, जैसे सतत खेती, पोषणीय खेती, प्राकृतिक खेती, परमा कल्चर, तो इसमें ये सेट ही है एक तरह से, आप देखिए पद्धति का सेट है, तो जो कि तीन चार शर्तों को पूरा करता है कि पर्यावरण का सम्मान करेगा, ये सम्मान होगा इसमें, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हो जाएगी, किसानों का उचित और पर्याप्त आय भी सुनिश्चित होगा इसमें
1: बिल्कुल,
0: और चूंकि वर्तमान में भू स्तर जो जल का स्तर है वो गिरता जा रहा, ऑर्गेनिक कार्बन की भी मात्रा कम होती जा रही है, और भारत की जो कृषि पद्धति है या खेती हो रही है उसमें हमेशा से नाइट्रोजन और ह्यूमस की जो कमी है वो हमेशा से रही है, तो इसकी पूर्ति करने के लिए लोग रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके विकल्प के तौर पे उन्हें प्राकृतिक खेती, ये अस्थाई कृषि अपनानी होगी, और उसके फायदे उनको दिखेंगे, और चूंकि तुरंत उसका फायदा नहीं दिखेगा लेकिन कुछ समय बाद निरंतर वो 3-4 साल तक अगर उसको प्रैक्टिस में ले आएंगे फिर उसको उनका फायदा दिखने लगेगा।
1: सर आपका मानना क्या है कि जब हम जैविक खेती की बात करें हैं और दूसरी ओर रासायनिक खेती की बात करते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है आपके हिसाब से?
0: जी देखिए, रासायनिक खेती में हमेशा जो संश्लेषित या कह सकते हैं हमेशा रसायनों का प्रयोग करके जो खाद बनाई जाती है और कीटनाशक बनाए जाते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, उनके प्रयोग से आप अंततः देखिए मनुष्य को ही नुकसान हो रहा है। आप बहुत सामान्य तरीके से इसको समझा जा सकता है कि जो यूरिया, डीएपी, एमओपी, ये सारी जो रासायनिक खाद है उनको डाला जा रहा है खेत में, हर साल हर फसल के दौरान डाला जा रहा है, तो वो धीरे धीरे उसकी जो अन्य जो नकारात्मक तत्व है उसमें वो मिट्टी में बढ़ते चले जाते हैं, और जब कोई पौधा हम लगाते हैं, खेती करते हैं, तो उस पौधे की जड़ में, उसके तने में, उसके फल में, उसके फूल में, सभी में वो अवशोषित हो जाता है, और उसके बाद जब हम उसको, अगर कोई जानवर भी उसको खाता है और उसके शरीर में जाता है, उसका दूध हम पीते हैं, तो उसमें भी जो नुकसानदायक पदार्थ होते हैं वो हमें हमारे शरीर में आ जाता है। हम डायरेक्ट जब सीधे तौर पे हम लोग उसका उपभोग करते हैं तो हमारे शरीर में वो नुकसानदायक पदार्थ आ जाते हैं, ऐसे धीरे धीरे उन तत्वों का सांद्रण हमारे शरीर में बढ़ जाता है जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। ऐसे जो जैसे कुछ भारी धातु है, पानी, मृदा, वायु सभी प्रदूषित होते चले जा रहे हैं इन कीटनाशकों और रासायनिक पदार्थों के अंधाधुंध प्रयोग से, इस तरह से जो सांद्रण बढ़ता है चूंकि पता नहीं चलता है लेकिन ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है खाना पीना, तो ऐसे में हमारे शरीर में इसकी सांद्रता बढ़ जाती है, इसको हम बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं, एक वैज्ञानिक टर्म है, तो इसमें पता नहीं चलता है लेकिन वो धीरे धीरे शरीर में एक स्तर तक पहुंच जाता है, और जब एक स्तर से ऊपर हो जाता है तो उससे नकारात्मक प्रभाव उसके दिखने लगते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां होती है जो इस समय आपको समाज में बहुत आसानी से दिख जा रहा है, सभी लोग किसी न किसी समस्या से ग्रसित होते चले जा रहे हैं खान पान की वजह से।
1: जी अगर सर, अगर फायदे की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो सर इसका जैविक खेती का फायदा क्या है, क्योंकि अभी अभी रासायनिक जो हम लोग खाद डालते हैं उसका हम नुकसान बताया है, फायदा क्या है जैविक खेती का?
2: जी, इसके अनेक लाभ है, और उसमें सबसे पहले आप ये देखा जाएगा कि मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हो जाएगी
1: जी।
2: उसमें जो पोषक तत्व है उसका संतुलन लंबे समय तक बना रहेगा
1: जी।
2: और जब इनका संतुलन लंबे समय तक बना रहेगा तो जो लाभदायक जीव
0: भी होगी, और ऐसे टिकाऊ खेती में फसल का उत्पादन भी ज्यादा होगा, और पशुओं का पालन पोषण भी अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि हानिकारक रसायन और कीटनाशक के प्रयोग से पर्यावरण पे अनेक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, और जबकि उसके विपरीत जब अब टिकाऊ और ये प्राकृतिक खेती की जाएगी तो उसका कोई ऐसा नुकसान नहीं दिखेगा, और टिकाऊ खेती करने पे देखिए लागत भी बहुत कम आती है
1: जी सर,
0: और पर्यावरण में प्रदूषण तो कम होगा ही, साथ साथ उत्पादन के साथ उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ का भी उत्पादन होगा, और अंत में मैं यही कहूंगा कि अस्थायी कृषि लाभदायक होना चाहिए।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आशा है सर हमारे किसान साथियों के जो सवाल थे उन सवालों को उनको

0: तरीके से जो आपने एक और जवाब जो दिया है का सब बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सक्रिय श्रोताओं को भी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपके आरजे वर्षा और आज हम बात करने वाले हैं जैविक खेती से होने वाले लाभ क्या क्या हैं। जी हाँ, भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है, बाजार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। जी हाँ साथियों, तो जाना कि जैविक खेती करने से कितने सारे लाभ होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए बाय बाय।
3: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम को। और साथियों, अभी हमने जाना हमारे विषय विशेषज्ञ संजय कुमार जी से हमारे श्रोता साथी और साथ साथ में किसान साथियों के जो सवाल थे, उन सवालों के जवाबों को जाना और जाना कि हम जैविक खेती से किस तरीके से लाभ ले सकते हैं और कैसे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और साथ साथ में अपनी खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं।
2: साथियों के मन में बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो चल रहे थे और उनके काफी हद तक उनको जवाब भी मिल चुके होंगे, लेकिन श्रोताओं, अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल चल रहे हैं तो हमेशा की तरह हमारा नंबर नोट करिए, क्योंकि हमारा नंबर जो है वो आपके सारे सवालों का जवाब देगा। जी हाँ श्रोताओं, उसके लिए आपको लिखना होगा हमारा नंबर जो है 9219207749। श्रोताओं, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या आप हमें पत्र के माध्यम से भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, जिसके लिए हमारा पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। साथियों, अब समय हो चला है कार्यक्रम में सवालों का। जी हाँ, हम आपसे पूछने वाले हैं एक सवाल और जिसका देना होगा आपको सही जवाब। अगर आप देते हैं सबसे पहले और सही जवाब तो आपको मिलेगा रेडियो बुंदेलखंड 90.4 की तरफ से एक खूबसूरत सा उपहार। तो साथियों, आप तैयार हैं ना इनाम जीतने के लिए? चलिए जानते हैं हमारा आज का सवाल। आज का हमारा सवाल है, क्या हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए? ये हमारा आज का सवाल है। और श्रोताओं, पिछले कार्यक्रम का हमारा जो सवाल था, स्थायी खेती से क्या खेती की लागत कम की जा सकती है, ये हमारे कार्यक्रम का सवाल था और जिसका सही जवाब देने वाले हैं लालचंद कुशवाहा जी, और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि सबसे पहले और सबसे सटीक शब्दों में सवालों का जवाब इन्होंने दिया है। तो इनको रेडियो बुंदेलखंड की तरफ से खूबसूरत सा उपहार जल्दी जल्द पहुंचा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें इतने ध्यान से सुनने के लिए और हमारे सवालों में जुड़ने के लिए। आज का सवाल यानी कि कार्यक्रम का सवाल एक बार फिर से सुन लीजिएगा। सवाल है, क्या हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए? तो आज के इस सवाल से उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो भी श्रोता साथी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं और इस सवाल का सही जवाब देंगे, उनको हम अगले कार्यक्रम में उनके नाम के साथ शामिल करेंगे। चलिए श्रोताओं, अब हमारा समय होता है आज के इस कार्यक्रम से जाने का। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी आपकी और हमारी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
0: और मनीष को दीजिए जाने की इजाजत।
2: आपकी और हमारी फिर होगी मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।
4: शुभ कल बदलती जलवायु के लिए।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम तमाम प्रकार की तरह तरह की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और करते भी चले आ रहे हैं। और कई दिनों से हम ये देख रहे हैं, बहुत सारे हमारे श्रोता साथी हमें पूछते हैं कि सर कहीं पर अगर वैकेंसियाँ निकले तो हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे बेरोजगार हमारे युवा साथी ये भी कहते हैं कि नौकरी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसे में हमारे श्रोता साथी क्या कर सकते हैं, क्या

उपाय होना चाहिए, क्या उपचार होना चाहिए इसका, कैसे हमारे युवा साथी अपना कैरियर यानी भविष्य बना सकते हैं। 12वीं की परीक्षा के परिणाम भी आ चुके हैं और हमारे विद्यार्थी साथी, युवा साथी अब असमंजस में रहते हैं कि हमें आगे चलकर कौन सा विषय चयनित करना है, कौन सी पढ़ाई ऐसी करनी है, क्योंकि हाल में ही हमने देखा है कि बहुत सारे युवा साथी जिस तरीके की ट्रेंड चल रही है कि हमें बीटेक या एमटेक या फिर तमाम प्रकार के जो विषय रहते हैं उसमें अपना करियर भविष्य देखना चाहते हैं, कभी उन्होंने ये नहीं सोचा है कि आपके अंदर कौन सी ऐसी क्षमता है, कौन सा ऐसा ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है जिसमें हम अपने हुनर दिखा सके, जिसमें अपना भविष्य बना सके। हमें बस सोचना ये होगा कि हमें क्या अच्छा लगता है, कौन सी पढ़ाई अच्छी लगती है। हाल में हमने देखा एक हमारे युवा साथी आए और हमसे कहने लगे कि आप हमें बीटेक में एडमिशन करा दीजिएगा, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि ये बीटेक सिफारिश से नहीं आपके टैलेंट से एडमिशन होते हैं, क्योंकि आजकल जो कट ऑफ होते हैं और जो मेरिट जाती है वो बहुत हाई जाती है, आपकी पढ़ाई, आपकी क्षमता जो आपकी है वो देखते हैं। हमने उनको, हमारे एक साथी हैं, उनसे हमने काउंसलिंग कराने के बाद ये नतीजा निकला कि हमें तो अकाउंटेंट में बहुत अच्छा अनुभव है, हम उसमें रुचि भी रखते थे लेकिन हम भटक गए हैं। तो ऐसे हमारे युवा साथी कभी नहीं सोचे कि हमें किस चीज़ में कौन कहाँ जा रहा है, कैसे कर रहा है, उसका ध्यान ना देकर अपना भविष्य अगर बनाना चाहते हैं तो हो अपनी सोच और जिस विषय में आपके हुनर है उस विषय को लेकर आगे जाइएगा। बहुत सारे वैकेंसियाँ उसी में निकलती हैं, बहुत सारा भविष्य उसमें दिखता है। आज हम साथियों, हम कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में खुला आसमान चूंकि कार्यक्रम जाता है, वैकेंसियाँ रहती हैं उस पर बात करते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे विद्यार्थी साथी हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन समस्या उनको पैसों की आती है। तो पैसों की समस्या के लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, बहुत सारे स्कॉलरशिप आते भी हैं, मिलते भी हैं और अपना वो कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी विषय को लेकर हम आगे बढ़ाते हुए हमारे पास बडी फॉर स्टडी से बहुत सारे स्कॉलरशिप के लिए, भविष्य बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए स्कॉलरशिप अलर्ट जारी होता है, उसको आप लोगों के समक्ष पहुंचाने का हम काम करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने युवा साथियों से कहना चाहते हैं, यदि आप एग्ज़ाम जो राष्ट्रीय परीक्षा होती है उसमें आपने पास कर लिया है, तो उसके लिए ऑल इंडिया अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप एंटेंट एग्ज़ाम 2026 एक राष्ट्रीय परीक्षा है जिसे पूर्व स्नातक छात्रों को सरकारी स्कॉलरशिप देने के लिए बनाया गया है। यह उन छात्रों के लिए है जो इंजीनियरिंग यानी बीटेक, बीई और मैकेनिकल कोर्स एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीएससी नर्सिंग के प्रथम वर्ष में अध्ययनरत हैं, उनमें आर्ट्स और कॉमर्स के पाठ्यक्रम भी शामिल है। आवेदन कैसे करें इसके बारे में भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बता रहे हैं। आवेदन उन सभी छात्रों के लिए जारी है जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा में न्यूनतम परीक्षा प्रतिशत और ग्रेड हासिल किए हैं। उसके लिए प्राइज मनी जो रहता है, रिवॉर्ड्स जो रहते हैं, वो है 2,00,000 तक का वार्षिक स्कॉलरशिप और एक प्रमाण पत्र। इस स्कॉलरशिप
कि इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको www.b4s.in/rv/aiug1 ये URL नंबर है, उस पर जाकर आप क्लिक करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म भी अपना इसमें डाल सकते हैं। दूसरा स्कॉलरशिप है वो है CBPS रिसर्च फेलोशिप 2026-27। CBPS रिसर्च फेलोशिप 2026-27 सेंटर फॉर बजट एंड पॉलिसी स्टडीज द्वारा पूर्व स्नातक छात्रों को प्रदान की जा रही है। इसका उद्देश्य है कि स्कॉलर्स को शिक्षा, लिंग शासन, स्वास्थ्य, पोषण, सार्वजनिक वित्त, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में अपने रिसर्च कौशल को बेहतर बनाने के लिए सहायता की जाती है। यह फेलोशिप उन छात्रों के लिए जारी है जिन्होंने बैचलर डिग्री पूरी कर ली है या जो अपने पूर्व स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम में अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं। उनके लिए 25,000 तक का मासिक स्टाइपेंड और अन्य लाभ भी इसमें शामिल हैं। इसके लिए हमारे श्रोता साथी इस स्कॉलरशिप के इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लिंक है www.b4s.in/rv/cbbs1, इस पर अपना फॉर्म डाल सकते हैं। अगले आगे बढ़ने से पहले स्कॉलर को आगे सुनने से पहले हम यहाँ पर एक विराम लेते हैं, एक छोटे से गीत को सुन लेते हैं। इसके बाद और भी हमारे साथ स्कॉलर अलर्ट के फॉर्म जारी हैं, किस तरीके से हमारे युवा साथी भर सकते हैं उस पर भी हम जानकारी देंगे, लेकिन इस गीत के बाद बने रहिए। आप क्या जय मनीष के साथ सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बात है।

चिंता से वो आत्मा कह रही है, वक्त आने से पहले ही ढल जाती है। अरे वक्त आता मैं चली जाती, आप मुझे विदा कर देते, किसी गरीब के साथ में भेज देते, और अगर इसके बावजूद भी दिक्कत थी।

अगर होती है तो आपके आंगन को शोभायमान बनाता, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित कर।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में। अभी आपने सतीश जी और उनके साथियों की आवाज में इस प्यारे से गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। आगे बढ़ते हैं और हम स्कॉलर अलर्ट के बारे में हम बातचीत कर रहे थे। तो अगला है कोटक जूनियर स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026-27। इसका कोटक एजुकेशनल फाउंडेशन द्वारा संचालित कोटक जूनियर स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026-27 जो कि कोटक महिंद्रा ग्रुप की सीएसआर क्रियान्वयन एजेंसी है, जो मुंबई महानगर क्षेत्र के उन मेधावी छात्रों को वित्तीय एवं शैक्षणिक सहायता प्रदान करता है जिन्होंने एसएससी, सीबीएसई और आईएससीई बोर्ड से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण की है। चयनित अभ्यर्थियों को 21 महीने तक प्रति माह 3,500 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिसकी कुल राशि 73,500 रुपए होगी। इसके साथ ही विद्यार्थियों को मेंटरशिप और शैक्षणिक सहयोग, कैरियर मार्गदर्शन एवं एक्सपोजर विजिट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि वे आत्मविश्वास के साथ अपनी शिक्षा जारी कर सकें। आवेदकों को वर्ष 2026 में कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा एसएससी, सीबीएसई और आईसीएसई में कुल मिलाकर न्यूनतम 85% या उससे अधिक अंक प्राप्त होना अनिवार्य है। आवेदकों ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए मुंबई महानगर क्षेत्र के जूनियर कॉलेज स्कूल में कला, वाणिज्य या साइंस स्ट्रीम में कक्षा 11वीं में प्रवेश लेना आवश्यक है। आवेदक छात्र के माता पिता की वार्षिक आय 3,00,000 या उससे कम होनी चाहिए। विद्यार्थियों का वर्तमान निवास मुंबई महानगर क्षेत्र में के अंदर होना चाहिए। कोटक एजुकेशन फाउंडेशन तथा बडी फॉर स्टडी के कर्मचारियों के बच्चे आवेदन के पात्र नहीं हैं। कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के दौरान प्रतिमाह 3,500 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। 21 महीनों के लिए कुल छात्रवृत्ति 73,500 निर्धारित है। इसके साथ विद्यार्थियों को मेंटरशिप सहयोग, शैक्षणिक सहायता, कैरियर मार्गदर्शन, एक्सपोजर विजिट्स जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इसकी अंतिम तिथि है 30/6/2026। इस स्कॉलरशिप के इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आगे दिए गए लिंक, जैसे कि www.b4s.in.rv/kjsp4, इस लिंक पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला है साथियों, मास्टर्स यूनियन स्कॉलरशिप एम्पटीट्यूट टेस्ट 2026। यह प्रौद्योगिकी एवं व्यवसाय प्रबंधन, मनोवैज्ञानिक एवं विपणन और वित्त एवं अर्थशास्त्र, डिजाइन, सस्टेनेबिलिटी, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करियर बनाने वाले उच्च योग्यता, उच्च संभावनाओं से उक्त उम्मीदवारों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया अवसर है। वित्तीय सहायता प्रत्यक्ष प्रवेश के साथ साथ ट्यूशन शुल्क छात्रवृत्ति प्रदान करता है। आवेदक वर्तमान में 12वीं कक्षा या किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड में नामांकित अथवा वर्ष 2025 में पूर्ण कर चुका हो। व्यवसाय प्रबंधन, प्रौद्योगिकी, नेतृत्व, डेटा साइंस एवं एआई डिजाइन, वित्त एवं अर्थशास्त्र, मार्केटिंग या फिर संलग्न क्षेत्रों में पूर्वकालिक पूर्व स्नातक पाठ्यक्रम अध्ययन के इच्छुक हों। मूल्यांकन आवश्यक सभी आवेदकों को मास्टर्स यूनियन स्कॉलरशिप टेस्ट 2026

0: उपस्थित होना अनिवार्य होगा। डेटा साइंस एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम के लिए वैकल्पिक पात्रता जेईई में 90% से अधिक होनी चाहिए। एमयूएसएटी स्कोर्स 35 से अधिक होना चाहिए। एसएटी का स्कोर 1500-1600 से अधिक होना चाहिए। 10% से 80% शुल्क में छूट छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए ऑनलाइन आवेदन डाल सकते हैं। इसके लिए www.b4s.in/rv/musCASP। अगला छात्रवृत्ति है वो वीवो पंजाब विद्या सेतु स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026 है। द वीवो पंजाब विद्या सेतु स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026 विगर मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की CSR की एक पहल है। पंजाब चंडीगढ़ की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आने वाले पूर्व स्नातक छात्रों को वित्तीय सहायता सहयोग प्रदान करती है। सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में सामान्य एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए जारी यह कार्यक्रम शैक्षणिक उत्कृष्टता को पोषण तथा समान शैक्षणिक अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। छात्रवृत्ति पंजाब चंडीगढ़ के निवासियों और पंजाब चंडीगढ़ अधिवास पात्रता प्रमाण पत्र होने चाहिए। सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों से पूर्णकालिक पूर्व स्नातक पाठ्यक्रमों में अध्ययन होना चाहिए। आवेदकों को कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 70% से अधिक अंक होने चाहिए। माता पिता की वार्षिक आय सभी आय स्रोतों को मिलाकर 8 लाख से अधिक नहीं होने चाहिए। छात्रों, दिव्यांगजनों, एकल अभिभावकों और बच्चों, अनाथ बच्चों, प्रथम पीढ़ी कॉलेज स्नातक छात्र को वैधता दी जाएगी। चयनित छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में सामान्य स्नातक के लिए ₹30,000 और व्यावसायिक स्नातक के लिए ₹60,000 का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप www.b4s.in/rv/vpvssp इस पर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये थी हमारी स्कॉलरशिप जहां पर हमारे युवा साथी अपना भविष्य बना सकते हैं। वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का, जाने का। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तो कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा हमारे इस पते पे। पता है हमारा रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम और चतगला के पास ओरछा और हमारा फोन नंबर 92-19-20-77-49। साथियों, यदि आपको लगता है कि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो रेडियो बुंदेलखंड के इस नंबर पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और भी आपको युवा साथी या हमारे स्कूल छात्र छात्राएं विद्यार्थी यदि किसी विषय को लेकर आप चयनित नहीं कर पा रहे हैं तो सहायता आपको हम लोग कर सकते हैं आपका मार्गदर्शन देकर। तो हम उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता साथी को यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।
1: राजा राम जय।

नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपके अपनी रेडियो दोस्त वर्षा की दो हाथ जोड़ के नमस्कार और राम राम पहुंच जावे भैया। और आशा करत हेंगे कि अपने सब श्रोता भैया बहन अच्छी तरह से होंगे और ये मौसम में ये घाम से और ये गर्मी से अपनो बचाव अच्छी तरह से कर रहे होंगे। अब देखो साथियों, जितने बचाव की बात आत हैगी, जितने अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखने की बात आत हैगी, तो अपन समझ जाते हैंगे कि अपने बीच में अपने साथियों के बीच में कौन सा कार्यक्रम आगा हुई है। तो आप समझे गए हुई हो, कार्यक्रम अपनो है वो डॉक्टर की सलाह। ये कार्यक्रम में साथियों अपन और अपने स्वास्थ्य संबंधी चर्चा को करत हेंगे।

और जानत हेंगे कि अपने शरीर को ठीक रखने के लाने, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लाने अपन को का उपाय करें चाहिए, की तरह से अपन को रहें चाहिए, कैसे अपनी देखभाल करें चाहिए, साफ सफाई को कैसे ध्यान रखें चाहिए, साफ सफाई को का महत्व होते है वो अपने शरीर के लाने, तो इन सब बातन को जानने के लाने अपन और ई कार्यक्रम को अपने साथियों के बीच में लेके आते हैंगे और यही विषय पे चर्चा कराते हैंगे। तो साथियों बहुत बहुत स्वागत है आपको आज के कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में। आपको बता देवे के पहले जो कार्यक्रम यानी कि पिछली बार जो कार्यक्रम अपन और ने सुनो हतो रेडियो के माध्यम से डॉक्टर की सलाह, उमे अपन और ने जानो हतो कि अपन और लू से बचबी के लाने का उपाय कर सकत हेंगे, और जब बात अपन और ने कही हती के अगले कार्यक्रम में अपन और डॉक्टर की सलाह भी लेंगे ई विषय को लेके। तो पिछली बार तो हमने और मनीष जी ने मिलके दो जन ने लू से बचबे के उपाय बताए थे आपको, और साथ ही में लक्षण भी बताए थे कैसे अपनो बचाव कर सकत हेंगे, ई के बारे में भी चर्चा बहुत सारी अपन और ने करी हती और आपने सब साथियों ने सुनी भी हती। लेकिन साथियों आज हम आपको डॉक्टर विनोद यादव जी से बातचीत सुनवावे वाले हेंगे कि की तरह से अपने श्रोता साथी ई मौसम को देखत भय, लू लपट को देखत भय, कैसे अपनो ध्यान रखे। काहे कि देखो घर से बाहर जब भी निकलत ना तो ऐसो लग रहा हो कि जैसे ऊपर से बिल्कुल आग बरस रही हो। कछु ना पूछो आज तो हम सही में हमें ऐसा लग रहा जब बाहर निकले ऑफिस से, देखो बाहर निकल के हमने तो बिल्कुल जा लग रही कि अपने जो किसान साथी हेंगे और जो मजदूर भाई हेंगे अपने, उनको ये मौसम में का हाल हो रहा हुई है। तो देखो साथियों हम अब आपसे ज्यादा तो कछु नहीं कह सकते हेंगे, काहे के काम अपन औरन को जो होते है वो बो तो अपन होकर नहीं आए है वो, लेकिन वो काम के संगे संगे अपन को अपनी सेहत को भी ध्यान रखने आए, काहे के अगर सेहत ना हुई तो काम करवे को का फायदा है वो अपन को, है कि नहीं। तो ऐसे जब भी अपने श्रोता साथी घर से बाहर जावे यानी के मजदूरी के लाने जावे या खेत पे अपने साथी जावे, तो बढ़िया पहले तो अपनी पेट पूजा कर लीवे, काहे के डॉक्टर साहब ने अपन को बताई है कि खाली पेट लपट लगने के चांस ज्यादा रहेंगे। और जो अपने साथी खेत पे जा रहे हेंगे तो तौलिया अच्छी तरह से मुड़ी में बांध लेवे ताकि आपको घाम और लपट ना लगवे। और देखो हमने पहले भी आपसे कही थी कि छाता को उपयोग भी आप लोग कर सकत होगे, छाता को उपयोग केवल यही के लाने नहीं है कि आप बारिश के मौसम में जो है उको उपयोग करो, लेकिन आप धूप से बचबे के लाने भी उको उपयोग कर सकत होगी, क्योंकि घाम बहुत ज्यादा पड़ रहा है वो साथियों। सो ऐसे में अपन को जो जो चीजें ऐसी लगवे कि जिसे अपन बच सकत हेंगे, अपनी धूप को बचा सकत हेंगे, अपने शरीर को भी सब उपाय अपन और कर सकत हेंगे। तो देखो साथियों इन्हीं सब बातन के संगे आज हम आपको डॉक्टर विनोद यादव जी से मिलवावे वाले हेंगे, उनकी चर्चा को सुनवावे वाले हेंगे कि ई विषय में उनको का के वो है वो। तो अपन डॉक्टर विनोद जी से मिलत हेंगे, लेकिन उनसे मिलवे के पहले अपन ते एक छोटे सी गीत के संगे मनोरंजन कर लेते हेंगे, काहे के कार्यक्रम में जब तक मनोरंजन ना हुई तब तक अपने कार्यक्रम को आनंद ही नहीं आउते। तो पहले अपन श्रोता साथियों ते सुनत हेंगे एक बढ़िया से लोकगीत को, जिखो गा रहे हेंगे रामनाथ अहिरवाल जी। तो आओ सुनत हेंगे गीत को, गीत के बाद फिर से हाजिर हुई है आपके कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में।

अरे गर्व ना करो प्यारे अहम ना करो, गर्व ना करो प्यारे अहम ना करो।

0: अहरवा जी की आवाज में अपन और ने अब एक बढ़िया सी लोकगीत को सुन लो है साथियों, और अपना कार्यक्रम चल रहा है वो डॉक्टर की सलाह। ये कार्यक्रम में साथियों अपन आगे बढ़ा थेंगे और आपको डॉक्टर विनोद यादव जी की वार्तालाप को सुनवा थेंगे जो फोन पे अपने संगे हेंगे, और लू लपट से बचबे के लाने वे तरीका अपन को बता रहे हैं, सो अपन और सब जने ध्यान लगा के इनके बात को सुन ले।
1: सर नमस्कार।
2: नमस्कार
1: सर, सबसे पहले आपका परिचय हम जानना चाहते हैं।
2: डॉक्टर विनोद बोल रहा हूँ, झांसी मेडिकल कॉलेज।
1: जी सर, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आज का जो हमारा विषय है कि लू लगने के क्या क्या कारण होते हैं, तो इस पर हम चर्चा करेंगे सर कि आखिरकार लू लगने के कारण क्या होते हैं। सबसे पहले
2: जी जी, तो लू लगने के कारण सबसे पहले हमें धूप में ज्यादा तेज धूप में नहीं निकलना चाहिए, और उसके बचाव के लिए हमें हल्के सफेद कपड़े और हल्के कलर में पहनना चाहिए। जैसे कि घरेलू उपाय जैसे आम का पना पीना चाहिए, बाहर निकलने पर

0: साथ में पानी की बोतल लेकर के चलना चाहिए, बेल और नींबू का पानी पीना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर में पानी की पूर्ति हो सके।
1: जी बिल्कुल, यानी कि जब भी घर से बाहर हम निकल रहे हैं तो साथ में पानी की
0: बोतल लेकर के चलना चाहिए। संभव हो तो गर्मी में सफेद कलर के, ज्यादातर सफेद कलर के कपड़े और हल्के रंग के कपड़े पहनना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर में तचन ना हो।
1: अच्छा, यानी कि हल्के रंग के कपड़े पहने, सफेद अगर भले ही नहीं मिले लेकिन हल्के रंग के जो होते हैं उन्हीं को पहनना चाहिए।
0: हाँ जी, धूप में निकलने से पहले
1: जी
0: शरीर में कौन कपड़े पहनना चाहिए, कौन कपड़े पहनना चाहिए जिससे कि हमारा शरीर पूरा कपड़ों से ढक जाए, उससे धूप से बचाव होता है जिससे कि हम लू से बच सकते हैं। दिन में खाली पेट बाहर ही निकलना चाहिए, धूप में कभी खाली कुछ ना कुछ खा करके ही बाहर निकलना चाहिए, फिर खाली पेट नहीं निकलना चाहिए।
1: जी, तो इससे भी क्या लू लगने के चांस रहते हैं, जैसे आपने कहा खाली पेट नहीं निकलना चाहिए।
0: जब हम खाली पेट निकलते हैं लू में और हमें तेज तपन धूप पड़ती है तो हमारा शरीर से पानी निकलने लगता है, मतलब पसीने जो अपना आता है तो पानी की कमी हो जाती है
1: जी,
0: उसकी वजह से लू लग जाती है और थकान महसूस होने लगती है ज्यादा चलने पर, ये लू का कारण बन जाती
1: है। लक्षण होते हैं अगर किसी साथी को लू लग जाती है तो उसके लक्षण कैसे दिखाई देते, कैसे पता करें कि हमें लू लपट लग गई है।
0: लू लगने में हमें हल्का हल्का मुंह को सूखना, पानी प्यास ज्यादा लगना बार बार, कभी कभी लूज मौसम भी हो जाते हैं, ऐसे कई प्रकार होते हैं, कई कारण होते हैं लू लगने के।
1: जी,
0: गर्मी में हमेशा हल्का भोजन करना चाहिए, ज्यादा भारी भोजन नहीं करना चाहिए, हल्का भोजन लेना चाहिए। गर्मी में ग्लूकोज पीना चाहिए थोड़ा बहुत, एक बोतल में एक ग्लूकोज घोल करके दिन में जितने बार पानी पीते हैं अपने बचाव के लिए ग्लूकोज भी पी सकते हैं।
1: जी, अगर सर कोई मार्केट वाला ग्लूकोज नहीं ला पाता है तो क्या घर में कोई ऐसा ग्लूकोज बनाने का उपाय है।
0: हाँ जी, जैसे धनिया है, हाँ, धनिया को हम पानी में भिगोते हैं, गीला कर लेते हैं धनिया को, धनिया को महीन पीस करके उसको हम छानते हैं कपड़े से, उसमें थोड़ा चीनी मिलाते हैं, चीनी मिला करके उसको हम पीते हैं, उससे लू से तमाम प्रकार का बचाव होता है और हमारे शरीर में पानी की पूर्ति होती है। जैसे आम का पना है, आम को हम घर पे कच्चे आम को लेकर के पना बनाते ना
1: जी,
0: पना बनाते उसमें हम चीनी डालते और आम डालते और उसे बड़े छान करके पीते हैं जिससे हमारी पानी की पूर्ति होती है।
1: जी, तो यानी गर्मी के मौसम में एक टाइम हम आम का पना भी खाते हैं।
0: जी
1: जी सर,
0: गर्मी के समय हमें प्याज है, खीरा है, ककड़ी है, ऐसे चीजों का सेवन करना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर में पानी की पूर्ति हो सके।
1: जी बिल्कुल सर, इस मौसम में क्या हमें तली भुनी चीजों का परहेज करना चाहिए।
0: सेवन परहेज करना चाहिए और बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए।
1: जी जी, अगर सर किसी साथी को लू लग जाती है और वो ज्यादा टाइम तक घरेलू उपचार जो होते हैं उनको करते रहते हैं और फिर भी ठीक नहीं होते हैं तो क्या ये सही है।
0: हाँ सही है, ज्यादा समय होने पर ज्यादा टाइम हो जाता है, घर का उपाय करते रहते हैं और आराम नहीं मिलता है, तत्काल डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि कई बार होता है साथी हमारे ऐसा ही करते हैं कि घर में जो चीजें अवेलेबल होती हैं उनको ही उपचार के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं।
0: नहीं जाते लेकिन दिखाना चाहिए, अगर ज्यादा समय हो जाता है और हम ठीक नहीं होते घरेलू उपाय से तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है।
1: जी बिल्कुल सर। सर एक और सवाल है थोड़ा सा कि जो हमारे साथी जो मजदूर भाई होते हैं अब उनको तो धूप में ही काम करना होता है, जैसे कि आपने बताया धूप में ना निकले लेकिन उनका काम ही धूप में निकलना होता है, तो क्या कोई ऐसा तरीका होता है जो वो इस लपट से धूप से बच सके और अपना काम भी करते रहें।
0: देखो गर्मियों में जब ज्यादा धूप पड़ती है तो हमारे शरीर पर छोटी छोटी मोमिया टाइप में हो जाती है, तो उसके लिए हम बचने के लिए बेसन को घोल बनाते हैं और उसमें प्याज महीन पीस करके डालते हैं अपने पूरे शरीर में लगाते हैं तो उससे हमारा बहुत बचाव होता है, धूप से बचते हैं।
1: तो यानी जो हमारे
0: लू से बचते हैं और जो घमौमिया होने का वो रहता है हल्की की छोटी जो फुंसियाँ हो जाती है वो फुंसियाँ नहीं हो पाती हैं बेसन और प्याज के घोल से।
1: जी, इसका घोल सर कितनी मात्रा में बनाना चाहिए, कैसे लगाना

0: तो ये क्या इससे कोई नुकसान है?
1: फिफ्टी फिफ्टी की मात्रा में, जैसे हम 100 ग्राम बेसन लेते हैं तो 100 ग्राम प्याज होना चाहिए, उससे हमारे शरीर में थोड़ा ठंडक पहुंचता है, अमोनिया टाइप नो इल्लू से बचाता है।
0: अच्छा अच्छा जी सर, बहुत बढ़िया सर, आपने बातें इस कार्यक्रम के माध्यम से मेलू से बचने के लिए क्या क्या उपाय होते हैं और चलते हैं, और हमारे श्रोता साथियों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर?
1: बस यही हम बधाई देना चाहते हैं सभी को कि हमेशा आम पानी की ये हमेशा बाहर निकलने से पहले एक पानी की बोतल साथ में लेकर के चलें और तली हुई चीजों से बचें, हमेशा थोड़ा ठंडे फल खाने की अपेक्षा करें।
0: जी बिल्कुल सर, सर आपने इतना अमूल्य समय हमारे साथियों को दिया।

बार फिर से साथियों आप सबके बीच में हाजिर है आपकी अपनी रेडियो दोस्त वर्षा और साथियों अपना कार्यक्रम चल रहा है डॉक्टर की सलाह। देखो अपन और ने कितनी बढ़िया नौनी सी बातन खून जानो है वो डॉक्टर विनोद जी के माध्यम से और उनने अपन खून बताओ है वो कि अपने जो साथी धाम में काम करा थेंगे घर से बाहर जा थेंगे काम करवे के लाने या फिर कछु और काम के लाने बाहर भी जा थेंगे अगर तो ध्यान रखवे के खाली पेट बिल्कुल भी ना करवे ताकि जो भी कारण हो थे वो लपट लगवी को अपन और जब खाली पेट घर से बाहर निकल जाओ थेंगे जा सोचत के अब रंदो तहीं जाके खा ले या फिर काके भी खाने नहीं आ इच्छा नहीं आ हमारी तो जी अपनी छोटी छोटी सी गलती जो हो जाती है ये लपट खो बिल्कुल नहीं हो तो देती के अजाओ हमें लग जाओ ऐसे ही हो ना कि अपन कहते नहीं आ बैल मुझे मार तो ये कहावत को ध्यान में रखत भाई अपन को का करने है वो कि अपने जो भी साथी घर से बाहर जाऊ थेंगे तो वे खाना खा के जावे और डॉक्टर साहब ने अपन को बताई है कि जब भी घर से बाहर जाऊ थेंगे तो पानी की एक बोतल अपने संगे जरूर रख लेवे ताकि आपको जितने भी प्यास लगे आप पानी पी सकत हेंगे और इसके माध्यम से आपके शरीर में जो पानी की कमी हो जाऊ थेगी वह बिल्कुल भी ना हो पाएगी। संगे में देखो अपन औरन को जब लपट लग जाऊ थेगी तो सबसे पहले तो उपचार जो है अपन और घरेलू करा थेंगे सब जने करा देखो हम भी करा थेंगे घरेलू उपचार के जैसे सक्सा मला थेंगे है आम को पनो खा थेंगे और बढ़िया ठंडी ठंडी जगह में रहेंगे ठंडे ठंडे फल खाऊ थेंगे पानी खूब अच्छी दम से पिया थेंगे। लेकिन साथियों जब अपन दो तीन दिन लगातार ये सब काम करते रहे घरेलू उपचार अपन करत रहेंगे और उनके बाद भी अपनी तबीयत में बिल्कुल सुधार नहीं हो पा रहा है वो बिल्कुल अपन को जा लग रही कि अब अपनी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही होगी तो अपन को ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए सीधे डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करवाए चाहिए क्योंकि देखो अपन उन्हें डॉक्टर तो है नहीं है। और रही घरेलू उपचार की बात तो पहले को समय पहले के वातावरण में और अब के समय और वातावरण में बहुत फर्क आ गया है वो अपनो पर्यावरण

बहुत बदल गए है वो, तो इनके अनुसार अपनो शरीर भी बदल गए थे वो। तो पहले जो अपनों ने अच्छी अच्छी हवा ले थे, अच्छी अच्छी खान पीन ले थे, शुद्ध शुद्ध ले थे, वे आज के समय में नहीं आ। सो ऐसे पहले के समय में जो घरेलू उपचार होते भी फायदा भी करते खूब ढंग से अपने ऊपर, लेकिन अब अगर समय की बात करें तो वातावरण अपनों बदल गए है वो आसपास को, जी की वजह से।

समस्या हो जाए तो आप डॉक्टर के पास उसको जरूर ले जावे। कापतों के अपन और सोच रहे हैं कि लपट लग गई और उनको कोनो और बीमारी हो गई हो, कछु और समस्या हो गई हो, तो ऐसे डॉक्टर बनाए गए हैंगे, ऐसे डॉक्टर बनाए गए हैंगे कि डॉक्टर अपन को जांच करके, अपने खून की जांच करके अपन को पूरी जानकारी बता देंगे कि इन्हें क्या परेशानी है, काय वजह से ठीक नहीं हो रहे हैंगे और काय तो बुखार इतनो कमजोरीपन काय आ गयो है। तो इन सब बातन को हमारे सभी श्रोता साथी ध्यान रखबे, कहे के देखो मौसम बहुत ही खतरनाक चल रहा है वो अपन औरन के बीच में, तो अपने सब श्रोता भैया बहन से यही कह वो है वो कि जब भी घर से बाहर निकल में धूप में जावे आप अगर, तो अपने सर से बढ़िया अच्छी तौलिया बांध ले भी। और ताकि एक बात और आपसे कहने हैगी कि जो अपने साथी भैया मोटरसाइकिल को उपयोग करत हैंगे और मोटरसाइकिल से जाऊ थेंगे, तो देखो आप हेलमेट को उपयोग तो जरूर करियो और हेलमेट के अंदर भी अगर आप तौलिया बांध सको तो तौलिया भी बांधो, ताकि जो खुली जगह रत हैगी आपके वो खुली जगह पे बिल्कुल भी घाम या लपट ना लग पावे। और साथ ही में आपको चप्पल पहन के नहीं जाने हैं। अब आप चप्पल की बात सुन रहे हो तो जाना सोचिए को बिल्कुल कछु पहन के नहीं जाने आपको, आपको क्या करने है वो कि चप्पल की जगह जूता को उपयोग करने है वो, कहे की ऊपर को घाम इतना तेज लग रहा है वो कि अपने जो पाउन की ऊपर की जगह होती ना वे टचत है बिल्कुल, ऐसी आग लगन लगा थे कि कहा बताया आपको, तो ऐसे आप जूता पहन के जाओ ताकि आपके पाँव सुरक्षित रहेंगे और आपको जो धूप हैगी वह बिल्कुल भी ना लग पेगी। साथ ही देखो डॉक्टर साहब ने अपन को बताई हैगी कि ये मौसम में अपन को जो तली हुई चीजें होती हैंगी इनको कम से कम सेवन करने हैं और हो सके अगर तो बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि अपन और देखो जल्दबाजी में काम करत रहेंगे और जल्दबाजी में जब घर से बाहर निकल या उठेंगे घर से खाना नहीं खा के आतेंगे, तो रास्ता में जो भी अपन को तली हुई चीजें मिलती है समोसा भजिया मोमोज जैसे काका तरह तरह की चीजें मिल जाती है, तो अपन सोचते कि चलो घर से खा के नहीं है तो इनको खा के पेट भर ले अपन, तो ये मौसम में खास तौर से जी तली हुई चीजन से अपन को पोषण दूर रहने है वो, अगर इस समय पे अपन ने अपनो स्वास्थ्य को ध्यान दे लो है वो तो अपन बहुत बढ़िया अच्छी तरह से रहे बाएंगे, नहीं तो फिर आप सोच लो कि तबीयत खराब होने वाली होगी। तो ऐसे आप सबसे जो ही कह वो है वो कि तली हुई चीजें ना तो आप खाओ ना अपने परिवार में अपने बच्चों को कोई को भी खान दो, कहे के मोनी मोड़ा भी बहुत जिद्दी होती, उन्हें भी शाम के रोज पापा घरे आ गए और बस उनने कहा समोसा खाने में तो पापा से, पापा ने जल्दी पैसा दे और मोनी मोड़ा गए जल्दी से लेके और खान लगे, तो जो नुकसानदायक चीजें होती है जिनसे अपन को बचने हैं वो। और डॉक्टर साहब ने देखो बताई है कि अपन ये मौसम में जो है पानीदार जो फल होते हैं उनको सेवन ज्यादा करवे ताकि अपने शरीर को ठंडक मिले, जैसे ककड़ी होते ही खीरा होते ही अबे देखो का कहते खरबूजा आ रहा तरबूजा आ रहा, ये सब चीजें अपन और थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाते रहे ताकि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो पावे और पानी पर्याप्त मात्रा में बनो रहे, और जितनी हो सके आप पानी पीवे, पानी में बिल्कुल भी कंजूसी ना करवे, जब समय मिले जब भी प्यास लगे तुरंत पानी पीवे, लापरवाही बिल्कुल ना करवे कि अबे नहीं तनक देर में पी लें या तनक देर में नहीं तनक और देर में पी लें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने है वो आपको। और हो सके तो हल्के रंग के जो कपड़ा होते ही आप उन्हें पहन दें ताकि आपके शरीर को भी राहत मिलेगी। तो देखो साथियों अपनी आज की कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में काफी वार्तालाप हो गई हैगी, अपन और अन्य डॉक्टर विनोद यादव जी को भी सुनो है वो, उनके अनुसार अपन ने जो भी बातें सुनी हैंगी, कोशिश करें अपन और ऐसे ही काम करवे और एक टाइम जो है वो अपन आम के पनों को सेवन करवे तो अपना स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, प्याज को भी ज्यादा से ज्यादा सेवन करवे। साथ ही अपनों कार्यक्रम से जाबे को देखो समय भी हो चलो है वो, सो अपन ही कार्यक्रम से चलत हैंगे, लेकिन दोस्तों आपको बताने है वो कि ये कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में जो अपन और बीमारी के बारे में जाना थे या मौसमी बीमारी जो होती है उनके बारे में जाना थेंगे या फिर इसे हटके आपको कछु और भी बीमारी के बारे में जानने की जरूरत हैगी आवश्यकता हैगी, तो आप हमें फोन के माध्यम से या फिर पत्र के माध्यम से जरूर बतावे, जरूर संपर्क करवे हमसे। इनके नाना साथियों अपना नंबर है वो 9219207749, ई नंबर को आप लिख लो साथियों, ताकि ई नंबर के माध्यम से आप हमें बता सकते होगी कि जो कार्यक्रम आप सबको कैसे लगो है वो, यू के बारे में यानी लपट के बारे में जो जानकारी अपन ने डॉक्टर साहब से जानी हैगी वह अपन सबको कैसी लगी हैगी, या फिर कछु और भी आप लू लपट के बारे में कंच आउट होगी कि और कौन कौन से तरीका होते ही लू से बचबी के नाने, तो वो भी आप

बता सकत हैं ये फोन के माध्यम से। काहे के देखो साथियों अपनो एक समय होते हो हर कार्यक्रम को और उस समय अनुसार अपन और को चलने भी आउते हो, तो अब समय जैसे कि हो चलो है वो कार्यक्रम से जावे को, लेकिन आपको जरूर बताने है वो कि जो कार्यक्रम आप सबको कैसे लगो है वो ई पे अपनी राय सुझाव जरूर देने हेंगे। साथ ही में अगर अपने साथी को पत्र लिखवो चाहते हैं कछु और अच्छी बातें कंचाऊ थेंगे तो पत्र के माध्यम से भी वे अपन से जुड़ सकते हैं। ई के लाने अपना पत्र है वो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओछा तेगेला के पास ओछा। अब देखो साथियों अपने रेडियो दोस्त वर्षा को दो जावे की इजाजत, काहे कि अपना समय हुआ होगा कार्यक्रम से जावे को। सो अपनी फिर ये मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक हमारे सभी साथी ऐसे ही सुनत रहे रेडियो बुंदेलखंड 90.4 अपनो रेडियो अपनी बातें अपने रेडियो दोस्त वर्षा के साथ में। नमस्कार।

0: अखबार निकाल करके बिल्कुल तैयार रखें और भुरभुरा हो बिल्कुल खेत, यह ध्यान रखना है। तो जब खेत बिल्कुल आपका तैयार हो गया और बीज शोधन, अगर आपने बाजार से बीज खरीदी है तो शोधित करके ही बीज आती है। अगर आपको शुद्ध बीज मिल रहा है बिना शोधित के, जिसका कि हल्के पीले कलर का बीज आपको दिखाई दे रहा है, जो लगता है कि ये बिना ट्रीटेड है, तो आप चाहें तो उसमें कैप्टान 2 से 3 ग्राम 1 किलो बीज, जिसे आपने आधा किलो के आसपास ली है, तो एक चुटकी दवा सिंपल 1 से 2 ग्राम उसमें मिला करके बिल्कुल ऐसे ऐसे मिक्स करने के बाद तो वो बीज शोधन हो जाएगा उससे। फिर आप 5 सेंटीमीटर की कतारों में लाइनें निकालें हर क्यारी में और गहराई रखें 1.5 से 2 सेंटीमीटर की, तो उसमें फिर इस बीज को बुआई करें। बीज बहुत घना ना बोएं, इस बात का ध्यान रखें। और जब बुआई कर लेते हैं आप, तो उसके ऊपर फिर सड़ी हुई गोबर की खाद का जो मिक्सर है उसके ऊपर से ऐसे फैला करके उसको बराबर समतल कर दें, बिल्कुल समतल रखें ऊपर, जिससे पानी दें तो ऊंचा नीचा ना हो, कहीं पानी ज्यादा ना हो। और बुआई करने के बाद सूखी हुई घास अगर आपके पास है या पराली है तो उसके ऊपर फैला दें अच्छे से। ये दो काम करती है, नीचे नमी को संरक्षण रखती है और ऊपर से तेज वर्षा वगैरह हो गई तो वो अधिक पानी से बीज इधर उधर न बह जाए उसको भी बचाती है। तो इस चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा बीज का जमाव होगा। एक बात और ध्यान रखें, गर्मी का दिन है, हो सके तो सुबह या सायं ही पानी दें, दिन में और पानी ना दें। कभी कभी क्या होता है हमारे किसान भाई की, अगर आपने सब कुछ सुरक्षात्मक ढंग भी अपनाया हुआ है और लेकिन फिर भी मौसम के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, तो हमारे नर्सरी के अंदर कमर तोड़ वाली बीमारी, जो डैम्पिंग ऑफ हम कहते हैं, तो वो आर्द्र गलन भी बोलते हैं, तो इस तरीके की बीमारी जो आ जाती है, इससे पौधे जमाव के बाद नीचे गिरने लगते हैं, उनकी कमर टूट जाती है, बहुत पतली होती है। तो उसके लिए आप जब आप सिंचाई करते हैं, सुबह या शाम करना है खाली सिंचाई, तो उस पानी में 20 ग्राम डाइथेनियम 45 10 लीटर में पानी के हिसाब से घोल बना करके आप उसको जब सिंचाई करते हैं उसी में छिड़काव किया करें। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप जो आपने सड़ी हुई गोबर की खाद डाली हुई है, अगर उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम लगती है और नर्सरी के पौधे हमारे जो पीले दिखाई देने लगते हैं, तो उसमें आप 0.3% यूरिया का घोल छिड़काव कर सकते हैं। जैसे कि 3 ग्राम यूरिया 1 लीटर पानी में घोल बना करके एक हल्के से छिड़काव कर दें, तो जो पौधे हैं, जो हमारी नर्सरी की पौधे, उनकी रंगत पीले से उठ के हरे रंग की हो जाएगी और फिर पौधों की बढ़वार बढ़ जाएगी। तो ये आपके काफी अनुभव पे निर्भर करता है, आप उसको देख करके समझ करके तब इन चीजों का इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा डाइथेन भी नहीं डालें, अगर जरूरत है तभी डालें, नहीं तो सिर्फ आप पानी दें। और इस तरीके से आपका कम से कम 30 दिन की पौध 15 सेंटीमीटर के आसपास पौध हो जाती है जब, तो वो बिल्कुल रोपाई के लिए तैयार होती है। और उस पर आप ध्यान रखें, रोपाई से पहले 4-5 दिन तक पानी बिल्कुल नहीं देंगे, और फिर जब आपको पौध उखाड़नी हो उस दिन आप पानी दीजिएगा। और फिर पानी निकालने के बाद हर पौध को आप कम से कम डाइथेनियम 45 में या फिर इमिडाक्लोप्रिड भी कभी कभी डालना पड़ता है, कभी आपको चूसक कीट के भी प्रकोप दिखाई दे जाते हैं नर्सरी के अंदर भी, तो आप इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा है ये, 3 ml दवा 10 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करेंगे, तो इससे किसी भी तरीके की चूसक वाले या अन्य कीट का प्रकोप नर्सरी में नहीं होगा और स्वस्थ पौध की उत्पादन होगी, जिससे अधिक से अधिक पौधे आपके मेन खेत में जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो उनका एस्टेब्लिशमेंट अच्छा होगा और फिर अधिक से अधिक लाभ मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी।
1: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी किसान पंच भैया बहनों को एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत कल्याण में। और साथियों, अब अपन ने डॉक्टर साहब से कितनी महत्वपूर्ण जानकारी को सुनो है और अपन ने जानो के कौन तरीके से हमारे किसान साथी नर्सरी कर सकते हैं, टमाटर की के नर्सरी लगा सकते हैं और संगे संगे कौन कौन सी वेरायटी हो सकते हैं। उन्होंने पंजाब की कछु वेरायटी बताई है, कछु वाराणसी की वेरायटी बताई है जो बहुत अच्छे आपको उत्पादन देगी, तो ऐसे ही वेरायटी अपन हो समझने हैं, सोचने हैं, तब अपने खेतन में लगाने हैं। अब तैयारी करवो बहुत आवश्यकता है और संगे संगे अपने खेत जो खाली पड़े हैंगे उनकी जुताई भी हमारे किसान साथी कर सकते हैंगे। हमें आशा है कि हमारे किसान साथी इन छोटी छोटी बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखे चाहिए उनको, कैसे आने वाला समय जो है बहुत महंगाई को हो जाएगा, कैसे अभी अपन देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा अपन हो लगत लग जाएगी और मुनाफा अगर देखो जाए यानी उत्पादन देखी जाए तो बहुत कम हैंगे। अब कृषि विभाग की ओर से बहुत सारी स्कीम्स चलाई जा रही, योजना चलाई जा रही हैंगी, तो उनको भी अपन को लाभ लेने, संगे संगे बीजन को चेंज जो अपन करते हैंगे तो कृषि विभाग की ओर से जो कृषि विस्तार अधिकारी रहेंगे

उनके पास जाके अपन को संपर्क करने, उनसे पूछने हैं कौन तरीके के कौन सा बीज लगाए चाहिए, कौन तरीके से अपन को तैयारी करनी चाहिए। और संगे संगे एक महत्वपूर्ण बात और बतावा चाहते हैं कार्यक्रम के माध्यम से अपन को कि हमारे किसान साथी अभी चूंकि खाली खेत पड़े हैं तो अपनी मिट्टी को परीक्षण अवश्य करा ले, कैसे कौन से तत्वन की कमी हैगी जो पता चल जाएगा, अगर जो पता चल जाए तो अपन देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपन जाके भरपाई भी अपन कर सकते हैं कि कौन से तत्व की कमी है। अब जाके पूर्ति करने के लाने कौन सी दवा अपन हो डालना चाहिए, कौन सी कौन से अपना हो बीज लगाना चाहिए, तो जैसे सारी जानकारी अपन हो उपलब्ध हो जाते हैं। अपने पास फैसिलिटी हैगी, अगर अधिक जानकारी आपको पाने हैं तो केबी की चले जाओ कृषि विज्ञान केंद्र, उतर जाके बहुत अच्छी अच्छी वेरायटी अपन हो उपलब्ध हो जाते हैं, उनसे भी पूछो, वैज्ञानिक रहते हैं उनसे भी सलाह लो, तभी अपना आने वाले समय में अपन अपनी आय को दुगनी कर सकते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। अब साथियों हम समय होते हैं जा कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जावे को, तो कार्यक्रम आपको कैसो लगो हमें जरूर बताओ। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जा कार्यक्रम खेत कल्याण से जावे की इजाजत, आपकी हमारी फिर हुई अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लाने नमस्कार, राम राम।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इबेरा अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। दोस्तों कार्यक्रम को जैसो नाम है तैसो काम भी है। इस कार्यक्रम में अपन एक विधा सुनते हैं और विधा को आनंद लेते हैं। सो आज सुने अपन इस कार्यक्रम में विधा तमुरा, और तमुरा भजन को अपन आनंद ले हैं। और इस तमुरा भजन को गा रहे हैं कोमल दास जी। सो कोमल दास जी के स्वर में अपन सुने आज ही कार्यक्रम में जे तमुरा भजन को। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। आओ सुनते हैं कोमल दास जी के स्वर में ई तमुरा भजन को।

बिल्कुल दोस्तों, सुमरो बारंबार जी। देखो कितना बढ़िया जो तमुरा भजन अपन ने सुनो है, तमुरा भजन को आनंद लाओ है। और ये भजन को गा रहे थे कोमल दास जी और उनके संगी साथी। अब दोस्तों आओ एक क्रम में कोमल दास जी के स्वर में फिर से सुनते हैं एक और बढ़िया से तमुरा भजन को, लेते हैं तमुरा भजन को आनंद। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में।

बिल्कुल, चलने परे जरूर हरी। देखो कितना बढ़िया जो गीत अपन ने सुनो है, तमुरा भजन को आनंद लो है, ये गीत को गा रहे थे कोमल दास जी। अब कोमल दास जी के स्वर में अपन आगे एक और गीत सुने और गीत को आनंद ले। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे, अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में सुनत रहो जो कार्यक्रम बेढ़ा बुंदेली।

के बाबा बारे के बैरागी। देखो कितना बढ़िया जो अपन ने तंबूरा गीत सुनो है, गीत को आनंद लो है। आओ ये गीत के संगे संगे अपन एक और आगे गीत सुनते हैं, गीत को आनंद लेते हैं। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन भैया के संग में, सुनत रहो जो अपना प्यारा सो कार्यक्रम बेधा बुंदेली अपने दोस्त माता दीन भैया के संग में। आओ सुनते हैं कोमल दास जी के स्वर में आगे एक और तंबूरा गीत खो।

0: वे की अनुमति और चलत चलत अपन लिख लो हमारा फोन नंबर और हमारे पते को जिसे के आप और हमारे फोन नंबर पे हमें कार्यक्रम की राय सुझाव दे सकें, पहुंचा सकें हम तक फोन के माध्यम से। और पति पे अगर आप चिट्ठी पत्री लिखवो चाहें तो हमें चिट्ठी पत्री भी लिख सकत। सो हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। एक संग हमारा फोन नंबर है 92-19-20-77-49। सो जो नंबर लगा के आप कार्यक्रम के राय सुझाव भी दे सकत के माता दिन भैया हमें आपको कार्यक्रम जो कैसा लगो। सो अब एक संगे संगे देखो अपनो समय।
1: ये आवाज है बुंदेल

बिल्कुल, निर्गुण खेत उजारे जतन बिन निर्गुण खेत उजारे। देखो कितना बढ़िया जो तमुआ गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रहे थे भैया कोमल दास जी। अब दोस्तों कोमल दास जी के गीत के संगे संगे हम आप और इनको बता दें कि आज के अपने कार्यक्रम विधा बुंदेली को इतनी समापन होबे को समय हो रहा है। सो अपने दोस्त माता दिन भैया को तो दो ही कार्यक्रम से